0: हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताए एवं काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियाँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हमारे विचार और हमारे कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हम नकारात्मक और बुरी सोच के साथ जीते हैं और काम करते हैं तो हमें दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर यदि हम शुद्ध और सकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं और काम करते हैं तो हमें खुशियाँ और सफलता का अनुभव होता है। हमारे विचारों की शुद्धता हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं।
1: सुप्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण FM 103.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:56 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी पहली प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी प्यारे श्रोताओं का मैं आपका रेडियो दोस्त कारगर रुबा आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सन 2024 के जून महीने के आज 8 तारीख है और दिन है सोमवार। आज के हमारी पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादन

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति गीत कार्यक्रम। 6:40 पर आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार। 6:45 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सुबह सवेरे।

7:10 पर आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार। 7:15 पर कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। 7:35 पर आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार। 7:40 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सदाबहार।

0: 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप। 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर आप सुनेंगे आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। 11 बजे आप फिर से सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तो प्यारे श्रोताओं, ये था आज के हमारे पहले प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक पांच सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. West Bengal is set to become the 36th state to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, ABPMJ, which is the world's largest publicly funded health assurance scheme. National Health Authority and Government of West Bengal will sign a memorandum of understanding today for the implementation of ABPMJ in the state. The MOU will be signed in New Delhi in presence of Union Minister for Health and Family Welfare, JP Nadda, and West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari. The development marks a major milestone in the journey towards achieving equitable and accessible healthcare for all citizens across the nation. The implementation of ABPMJ in West Bengal is expected to extend financial protection against catastrophic health expenditure to millions of eligible beneficiaries in the state while enabling seamless portability of healthcare benefits across the country. It will also strengthen the state's healthcare ecosystem by enhancing access to quality and affordable healthcare services. Ayushman Bharat PMJ provides health cover of up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to eligible beneficiaries. Since its launch, the scheme has emerged as a cornerstone of India's healthcare transformation, reducing out-of-pocket expenditure and improving access to quality treatment through a vast network of empaneled public and private hospitals. The National Testing Agency, NTA, has released the exam city intimation slip for the NEET UG 2026 re-examination scheduled to be held on 21st of this month. The re-examination will be conducted in pen and paper mode from 2 p.m. to 5:15 p.m. across 551 cities in India and 14 cities abroad. The NTA clarified that the exam city intimation slip is not the admit card and is being issued solely to inform candidates about the city where their examination center will be located. The NTA has urged candidates to stay updated through its official websites for the latest announcements regarding the examination and admit card release. The NEET UG for admissions into medical courses took place on May 3rd this year but was cancelled by the NTA on May 12th amid allegations of paper leak. The CBI is currently investigating this matter and a retest is scheduled for June 21st. Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the three-day Zone 2 conference of the Commonwealth Parliamentary Association, CPA, India region in Chandigarh today. The conference is being hosted by the Haryana Legislative Assembly. The event will be attended by Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh, Haryana Chief Minister Naib Singh Saini, Haryana Assembly Speaker Harvinder Kalyan, presiding and deputy presiding officers from 15 legislatures across the country, as well as members of legislative assemblies. During the inaugural session, Haryana Vidhan Sabha Speaker Harvinder Kalyan will deliver the welcome address. A special documentary showcasing the history and development of Haryana will also be screened on the occasion. This will be followed by address from Lok Sabha Speaker Om Birla, Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh and Chief Minister Naib Singh Saini. Iran has launched missiles at Israel, marking its first such attack since the 8th of April ceasefire, according to the Israel Defense Forces. Iran's state broadcaster also confirmed the launches. Following the Iranian launches, U.S. President Donald Trump said he will tell Israeli Prime Minister Netanyahu not to carry out a retaliatory strike after Iran fired missiles at Israeli targets. President Trump said he wants Iran to stop firing missiles and return to negotiations.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कारग, लेकर आया हूं प्रेम भक्ति और मधुर संगीत से सजा हुआ भक्ति गीत कार्यक्रम। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही मन में प्रेम, आनंद और भक्ति की एक मधुर लहर दौड़ जाती है। वे केवल द्वापर युग के नायक नहीं, बल्कि जीवन के महान मार्गदर्शक हैं। कभी नटखट माकनचोर बनकर सबका मन मोह लेते हैं, तो कभी कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जीवन का अमूल्य ज्ञान देकर धर्म और कर्म का मार्ग दिखाते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में प्रेम हो, करुणा हो और हर परिस्थिति में मुस्कुराने की कला हो। उनके बांसुरी की मधुर थान आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय को भक्ति के रंग में रंग देती है। और आज के इस पावन भक्ति सफर में हम सुनने जा रहे हैं मधुर स्वर कोकिला सुमन कल्याणपुर की सुरीली आवाज में कुछ सुंदर कृष्ण भजन। तो आइए अपने मन को वृंदावन की गलियों में ले चले, राधे कृष्ण के प्रेम और भक्ति में डूब जाइए और शुरुआत करते हैं आज के भक्ति गीत कार्यक्रम। बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।

श्रोताओ, भगवान श्री कृष्ण का नाम अपने आप में एक मंत्र है जो मन को शांति, हृदय को आनंद और आत्मा को भक्ति से भर देता है। जब भक्त प्रेम और श्रद्धा के साथ प्रभु का स्मरण करता है तो हर सांस में भक्ति का संगीत गूंजने लगता है। हरे राम हरे कृष्ण का महामंत्र सदियों से लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा और आंतरिक शांति प्रदान करते आया है। अब इसी भक्ति को आनंद के भाव के साथ सुनते हैं गजल और भक्ति संगीत के महान गायक जगजीत सिंह की आवाज में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपकी सुबह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरू हुई होगी, क्योंकि जब सुबह पॉजिटिव हो तो पूरा दिन ऑटोमेटिक एनर्जेटिक हो जाता है। मैं हूं आपका अपना आरजे कारगर और आप सुन रहे हैं सुबह सवेरे वो खास प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं योग, एक्सरसाइज और हेल्थ टिप्स की, ताकि आपका तन रहे पीत और मन रहे सुपरहित। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कुछ सबसे जरूरी है तो वो है अच्छी सेहत और पॉजिटिव सोच। और इसी लिए हर सुबह हम लेकर आते हैं सिंपल योग आसन, इजी एक्सरसाइज रूटीन और डेली लाइफ की यूजफुल हेल्थ टिप्स जो आप घर बैठे फॉलो कर सकते हैं। तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने कंधों को हल्का सा स्ट्रेच कीजिए और तैयार हो जाइए एक हेल्दी और एनर्जेटिक शुरुआत के लिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आज के योग सेगमेंट। आज सुबह सवेरे के योग सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो आजकल हर उम्र के लोगों में तेजी से बढ़ रही है, वो है मोटापा। ज्यादा वजन सिर्फ देखने का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह डायबिटीज, हाई बीपी, थकान और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं की जड़ बन सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, अगर रोज 20 से 30 मिनट योग को दे दी जाए तो फर्क साफ दिखाई देता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहला है सूर्य नमस्कार। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, ये 12 स्टेप्स की पूरी श्रृंखला होता है। धीरे धीरे 4 से 5 राउंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो नियमित अभ्यास से आप पूरे 10 या 12 राउंड तक जा सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने के कुछ फायदे हैं। पूरे शरीर की कैलोरी बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है, और साथ में पेट और कमर की चर्बी कम करने में सूर्य नमस्कार काफी मददगार होता है। अगला योग है भुजंग आसन। इसे करने के लिए पेट के बल लेटे, हाथों के सहारे छाती ऊपर उठाएं, 15 से 20 सेकंड होल्ड करें इसी स्थिति में। भुजंग आसन से पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है, साथ में रीढ़ मजबूत होती है और पाचन बेहतर होते हैं।

अगला योगासन है पवन मुक्तासन। इसे करने के लिए पीठ के बल लेटे, घुटनों को सीने से लगाए, 20 सेकेंड तक होल्ड करें। पवन मुक्त आसन करने से आपके गैस और पेट की सूजन कम होता है, पेट की चर्बी घटाने में सहायक होता है।

अगला है धनुरासन। इसे करने के लिए पेट के बल सबसे पहले लेट जाए, पैरों को पीछे से पकड़े और शरीर को धनुष की तरह उठाए। इसे करने से पूरे शरीर की चर्बी कम करने में सहायक होता है और आपके पाचन तंत्र मजबूत होते हैं। अगला और अंतिम प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। इसे करने के लिए सीधा बैठे, तेज गति से सांस बाहर छोड़े, 1 से 2 मिनट से शुरुआत करें। इसे करने से पेट की चर्बी कम होता है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है, साथ में शरीर डिटॉक्स होते हैं। दोस्तों, मोटापा कंट्रोल करने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं। रोज कम से कम 30 मिनट योग अवश्य करें, जंक फूड कम करें, मीठा और तला हुआ सीमित करें, 7 से 8 घंटे की नींद लें, दिन में 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिए। याद रखिए दोस्तों, वजन एक दिन में नहीं बढ़ता तो घटेगा भी धीरे धीरे, लेकिन अगर निरंतरता रखी तो बदलाव जरूर दिखेगा। आज से ही शुरुआत कीजिए, छोटा कदम बड़ा बदलाव। कल फिर मिलेंगे सुबह सवेरे के अगले योग सेगमेंट में। तब तक पीत रहिए, एक्टिव रहिए और पॉजिटिव रहिए दोस्तों। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं सपने फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत। आवाज दी है हेमा सरदेसाई, मलेशिया वसुदेवन और ए आर रहमान ने।

दोस्तों, आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुबह सवेरे में। तो दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आज के हेल्थ सेगमेंट की ओर। आज के इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आदत की जो छोटी लगती है लेकिन असर बहुत बड़ा डालती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं बॉडी क्लीनिनेस की, यानी शारीरिक स्वच्छता की। साफ सफाई सिर्फ बाहर से अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छी सेहत, आत्मविश्वास और बीमारियों के बचाव से लिए के लिए भी बेहद जरूरी है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है रोजाना स्नान, यानी डेली बाथ का महत्व। इससे पसीना, धूल और बैक्टीरिया हटते हैं, त्वचा स्वस्थ रहती है, शरीर में ताजगी और ऊर्जा आती है। दोस्तों, मौसम के अनुसार गुनगुने या सामान्य पानी से स्नान करें। अगला है हाथों की सफाई। खाने से पहले और बाद में, बाहर से आने के बाद और शौचालय के बाद अपने हाथों को जरूर साफ करें। इससे हाथों के जरिए सबसे ज्यादा कीटाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, तो हाथों की सफाई से हम कीटाणु से छुटकारा पा सकते हैं। अगला है दांतों और मुंह की सफाई। दिन में दो बार ब्रश करें, जीभ की सफाई करें, जरूरत हो तो माउथ वॉश का उपयोग करें। तो रोजाना ब्रश करने से मुंह की बदबू, दांतों की सड़न और मसूड़े की बीमारियों से बचाव मिलता है। अगला है साफ कपड़े पहनना। रोज धुले कपड़े पहने, अंडर गारमेंट्स रोज बदलें, क्योंकि गंदे कपड़े त्वचा संक्रमण का कारण बन सकते हैं। अगला है बाल और नाखूनों की सफाई। समय समय पर बाल धोए, नाखून छोटे और साफ रखें। इसके फायदा है गंदगी और बैक्टीरिया जमा नहीं होते। तो दोस्तों, बॉडी क्लीनिनेस के बड़े फायदे हैं। संक्रमण और बीमारियों से बचाव मिलता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, दूसरों पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और त्वचा और बालों की बेहतर सेहत होती है। और कुछ अतिरिक्त सुझाव हैं, साफ तौलिया और रुमाल का उपयोग करें, विस्तार की चादर नियमित समय पर बदलते रहिए और घर के वातावरण को भी साफ रखिए। याद रखिए दोस्तों, स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। जब शरीर साफ होगा तो मन भी हल्का

0: और खुश रहेगा। कल फिर मिलेंगे सुबह सवेरे के अगले हेल्थ सेगमेंट में। तब तक साफ सुथरे रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए, और साथ में सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz। तो आइए इससे सुबह सवेरे कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत। आवाज दी है अलका याग्निक और हरिहरन ने फिल्म खामोशी द म्यूजिकल से।
1: मैं एनी, मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूं जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूं, उनकी आवाज हूं। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूं, गाना चाहती हूं। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए सुनते हैं अब पता नहीं श्रोताओं का कार्यक्रम।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नई सुबह की सुनहरी किरणों, ताजगी हवा और ढेर सारे सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग और प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। दोस्तों, हर सुबह अपने साथ लेकर आती है नई उम्मीदें, नए अवसर और नई जानकारियां, और यह हम आपको दिन भर के महत्वपूर्ण खबरों और अपडेट से रूबरू कराने के लिए है। कार्यक्रम में आज हम जानेंगे देश और दुनिया के ताजातरीन खबरें और हमारे राजधानी से प्रकाशित अखबार के सुर्खियों पर एक नजर, और साथ ही सुनेंगे कुछ खूबसूरत से गीते। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आज के राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू होने जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार आज केंद्र के आयुष्मान भारत पीएमजे स्वास्थ्य योजना को लागू करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने जा रही है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल देश का 36वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा जहां यह योजना लागू होगी। इससे लाखों परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत के लिए ईयू का बड़ा सहयोग कार्यक्रम। यूरोपीय संघ ईयू का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज और कल असम के गुवाहाटी दौरे पर है। इस दौरान भारत के पहले ब्लू वैली क्लस्टर की शुरुआत की जाएगी। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में सतत विकास और निवेश को बढ़ावा देना है। मानसून की रफ्तार तेज, कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई क्षेत्रों में भारी वर्षा और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर तूफान का असर। दिल्ली एनसीआर में आए तेज तूफान और खराब मौसम के कारण कई उड़ानों पर असर पड़ा। रिपोर्टों के अनुसार कुछ विमानों को नुकसान भी पहुंचा है, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। भूटान में भूकंप के झटके भारत में भी महसूस किए। भूटान में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों सहित नेपाल और चीन के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। मणिपुर में असम राइफल्स चौकी को लेकर विरोध प्रदर्शन। मणिपुर में असम राइफल्स की एक अस्थायी चौकी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के दौरान तनाव की स्थिति बनी और कुछ लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। दोस्तों, रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। ईरान इसराइल तनाव फिर बढ़ा। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल द्वारा दक्षिण बेरूत में किए गए हवाई हमलों के बाद ईरान ने इसराइल की और मिसाइलें दागी। इससे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई है। तेल की कीमतों में तेज उछाल। ईरान इसराइल तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल मच गई है। निवेशकों को आशंका है कि यदि संघर्ष बढ़ा तो ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ सकती है। अमेरिका शांति वार्ता बचाने की कोशिश में। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल से संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका वर्तमान में ईरान के साथ चल रही वार्ताओं को जारी रखने के प्रयास में जुटा हुआ है। यूक्रेन मुद्दे पर लंदन में महत्वपूर्ण बैठक। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में यूरोपीय नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इससे रूस यूक्रेन संघर्ष और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा होगी। मध्य पूर्व में हवाई यातायात प्रभावित। तनाव बढ़ने के बाद ईरान ने अपने पश्चिमी हवाई क्षेत्र में उड़ानों पर रोक लगा दी है और कई एयरलाइनों ने क्षेत्र से गुजरने वाले मार्गों में बदलाव किया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा है। वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता। मध्य पूर्व संकट और भू राजनीतिक तनाव के कारण दुनिया के कई शेयर बाजारों में दबाव देखा गया है। निवेशक सोना और अन्य सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर अब रुख कर रहे हैं। दोस्तों, ये था आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलिए रुक करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित अरुणाचल टाइम्स अखबार के मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। चायांग ताजो विलेजेस डिवास्टेटेड बाय प्लस फ्लड।
खबर है कि 4 जून को पूर्वी कमेंग जिले के दूरदराज प्रशासनिक मुख्यालय चायांग ताजो में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही हुई। चायांग ताजो में लगातार बारिश हुई जिससे कई इलाकों में जबरदस्त बाढ़ आ गए और जरूरी सेवाओं, पानी की सप्लाई लाइन और बिजली लाइनों में रुकावट आ गई। सन टू लॉन्च इनडेफिनिट स्ट्राइक। नेरिस्ट के डायरेक्टर प्रोफेसर नरेंद्र एस की कथित तौर पर जबरदस्ती इस्तीफे लिए जाने के मामले में नेरिस्ट स्टूडेंट यूनियन सन ने 8 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। रविवार को नेरिस्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन को लिखे एक पत्र में सन ने कहा कि प्रोफेसर नरेंद्र नाथ के इस्तीफे के बारे में 3 जून को भेजे गए पत्र पर शिक्षा मंत्रालय नेरिस्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन या राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब न मिलने के कारण उन्हें अपनी मांगे पूरी होने तक हड़ताल शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सीजीपी ए डेमोक्रेटिक रिनाइसेंस ऑफ और ए डिजिटल मीट। हाल ही में देश भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी राय, बहस और चर्चाएं की बार आ गई है जो सरकार के कामकाज से जनता की नाराजगी जाहिर करती है और उन मुद्दों को उजागर करती है जिनके बारे में कई लोगों का मानना है कि इन्हीं की वजह से मई में कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ। सीजीपी के अचानक उभार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये जेन जी की अगुवाई में लोकतांत्रिक पुनर्जागरण की शुरुआत है? क्या ये युवाओं के नेतृत्व वाली राजनीतिक भागीदारी के एक नए दौर की आहट हो सकती है या फिर ये सोशल मीडिया के किसी और अल्पकालिक ट्रेंड की तरह ही धीरे धीरे गुमनामी में खो जाएगी? गांधी हिट्स आउट एट पीएम मोदी ओवर सीबीएसई ओसीएम रो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को विस्ला लोअर छात्र साठक सिद्धांत और उनके साथी निसर्ग अधिकारी की तारीफ की। उन्होंने सीबीएसई और सीओई ईएमपीटी के बीच मिलीभगत का पर्दाफाश करने के लिए उनकी सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि युवा सिर्फ रील्स बनाते रहे और पकौड़े तलते रहे, लेकिन इन दो युवाओं ने सवाल पूछे और उनके जवाब भी ढूंढे। जंतर मंतर प्रोटेस्ट एट ट्रेलर, प्रधान मास्त रिजाइन सीजीपी। ऑनलाइन मूवमेंट कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत डिबके ने रविवार को जंतर मंतर पर ग्रुप के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले हजारों लोगों का शुक्रिया अदा किया और चेतावनी दी कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से नहीं हटाया गया या उन्होंने 7 दिनों के अंदर इस्तीफा नहीं दिया तो ये आंदोलन जारी रहेगा। APCSOA कंडेम असोल्ट ऑन ऑफिसर। अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 6 जून की सुबह डॉक्टर टादांग राय पर हुए शारीरिक हमले की कड़ी निंदा की और बताया जा रहा है कि यह मामला अगम मिहू नाम के व्यक्ति ने किया था। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि दिन दहाड़े अधिकारी पर हुआ यह हमला जो उनके सरकारी कामकाज के दौरान हुई एक घटना से जुड़ा है और जिसकी जांच पहले से ही अनिनी में पुलिस कर रही है, यह बहुत चिंता की बात है। नेपाल वांट्स टू रिजॉल्व बॉर्डर रो विद इंडिया, खानल। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानल ने रविवार को कहा कि नेपाल भारत के साथ सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाना चाहता है क्योंकि अगर दोनों पक्ष खुले दिल से बैठे तो कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती। खानल ने कहा कि काठमांडू में बनी नई सरकार भारत को 21वीं सदी की भू राजनीति के तेरे मेरे और बहुत ज्यादा संवेदनशील नजरिए से नहीं देखना चाहती बल्कि इसके बजाय दोनों देशों की सामूहिक समृद्धि के लिए आपसी फायदे वाले रिश्ते बनाना चाहती है। एंटी रिलीजियस नीट यूजी री एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने रविवार को नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। यह परीक्षा 21 जून को होनी है। उम्मीदवार अब नीट यूजी 2026 के लिए अपने अलॉट किए गए परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं। एनटीए ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अपनी स्लिप देखने और डाउनलोड करने के लिए अपनी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। तो दोस्तों, ये था आज के
न्यूज सेगमेंट आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम मॉर्निंग इंटरटेनमेंट में। फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत श्रेया घोषाल और अभिजीत की आवाजों में।

0: कार्यक्रम के अंत में आइए एक और गीत सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म परिणीता से।
1: ला ला ला हे से यो माइंड

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का मॉर्निंग इंफोटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट अंडरग्राउंड 2026 के री एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन जितिन सिंह पेपर लीक पकेला सोशल मीडिया लो गिलिन कुदाम सी जिलिन कुनाम से मैं नाम गम खेला मैं पालिन दुखो एन टी ए गया सोशल मीडिया पोस्ट लो मैं पाकु नाम गया इंडियन आर्मी गए स्पियर हेड डिवीजन गए डिवीजन ऑफ स्पियर कोर्स गए खिलो गए सैटरडे अलोलो प्रोजेक्ट नवभारत अरालोक लिखा बाली लो यूथ एम्पावरमेंट इनिशिएटिव गुनी रिगे गेन खुबला बिपाली दुख सो लिखाबाली गला शिलापत्र मोलो लिंगुला चंगु स्टूडेंट लेले गुब सो यूथ प्रोग्राम सम रिबाम गेन खुबला बिपा दुखु सो आरे ने चुकब विकसित भारत पेलेलो स्टूडेंट देदंगा गंबा तमसर किनु गेन खुबला मैं पालिन दुखु अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी रूट्स आर्ट्स एंड कल्चर ट्रस्ट लिखन को बड़ी बन तो खुला आईसीआर रीजन का मो मलंग लो स्ट्रीट प्ले को नहीं मयो रिबाम का गंज खुबला मैं पालिन दुखु सो ड्रग एब्यूज प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस पोक्सो डोमेस्टिक वायलेंस और प्रिजन राइट्स पर ले लोग तमसर के नुलाक लड़ी गई खुबला मैं पाल दुखू अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन वर्ल्ड बाईसाइकिल 2026 इटानगर लो मेगा साइकिलिंग इवेंट को मयू रेबाम गई खुबला मैं पालन दुखु सो गरीगे को लो स्टेट लो स्पोर्ट्स मिनिस्टर केंटो जिनी ला एडवाइजर मुचु मिट्टी ओके कई कई ने दे देंगे नोबाम गई खुबला मैं पा दुखु तमिन वेलफेयर सोसाइटी लो रिंग लो अखिन सक्सेसफुल कैंडिडेट गुगे पीजीटी और जी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लो पालन को देगा लेखन कॉन्स्टिट्यूंसी लो MLA लिखा सोनी अमीन गो पुलिस स्टेशन गो जिलिनगंज खुबेला में पा दुखो सो तमिन वेलफेयर सोसाइटी अरालोक सकन गो रिलिन कुनाम सम अलरोंग ब मंग दुखुनेला MLA लिका सोनी निमे मे पादे दुखु सरुग तागिन गाम ब युनि मे तसंका हबो
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सदाबहार के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz। और अब समय हो गया है जानने का ईटानगर के आज के मौसम का ताजा हाल। दोस्तों आज सुबह से ही मौसम का मिजाज कुछ बदला सा नजर आ रहा है। आसमान में बादलों की अच्छी मौजूदगी बनी हुई है और हवा में नमी महसूस की जा सकती है। सुबह का मौसम सुहावना और आरामदायक रहेगा। तापमान लगभग 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कहीं कहीं हल्की फुहारें भी देखने को मिल सकती है। दोपहर तक तापमान बढ़कर लगभग 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। धूप और बादलों की लुकाछुपी देखने को मिल सकती है। हालांकि आसमान पूरी तरह साफ रहने की संभावना बहुत ही कम है और बारिश की संभावना आज दोपहर बाद और शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ इलाकों में गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं, इसलिए अगर आप बाहर निकलने का कार्यक्रम है तो छाता साथ रखना बेहतर रहेगा। शाम के समय मौसम काफी प्लेजेंट और ठंडा महसूस हो सकता है। बारिश होने पर तापमान गिरकर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। हल्की हवाएं मौसम को और भी खुशनुमा बना देगी। रात में आसमान अधिकतर बादलों से घिरा रह सकता है। बीच बीच में बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी और तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आज ईटानगर में मौसम रहेगा बादलों से घिरा हुआ, बीच बीच में बारिश की संभावना के साथ और दिन में अपेक्षाकृत सुहावना। अगर इस वक्त आपके इलाके में बादल घने या बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है तो दिन में बारिश की संभावना और बढ़ सकती है, इसलिए आज छाता साथ रखना और एक अच्छा विचार होगा। और अब मौसम के इन ताजा खबरों के बाद वक्त है एक और मधुर सदाबहार गीत आप सबको सुनाने का। आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर के आवाज में फिल्म हमराज का ये बेहद सदाबहार गीत।

दोस्तों, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं सदाबहार, जहां हर गीत लेकर आता है सुनहरे दौर की मीठी यादें और दिल को छू लेने वाले एहसास। और अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसका नाम सुनते ही मौसम भी जैसे और सुहाना हो जाता है। कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब चारों तरफ खुशियों की बहार आती है, दिल गुनगुनाने लगता है और हर नज़ारा खूबसूरत लगने लगता है। ऐसे ही खुशनुमा एहसासों से सजा है ये सदाबहार नगमा।

दोस्तों, अब बढ़िए एक ऐसे मस्त मौला और दिलकश गीत की जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। प्यार में दीवानगी भी क्या खूब चीज होती है दोस्तों। जब दिल किसी के प्यार में खो जाए तो हर बात, हर ख्याल और हर सपना उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सदाबहार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
4: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज के इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या

0: आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
6: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
4: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा अनुसार ईरान ने इसराइल है। एक रिपोर्ट।
7: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम हेलो ईटानगर के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Hello, Ita Nagar.

नमस्कार, आदाब और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और मैं हूं आपका अपना आरजे कारगे, लेकर आया हूं कार्यक्रम हेलो ईटानगर। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं जानकारी इतिहास और संगीत का एक खूबसूरत संगम। जानेंगे कुछ उपयोगी रोचक जानकारियां और पलटेंगे इतिहास के पन्ने और देखेंगे आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। देश दुनिया की दिलचस्प बातें करेंगे और बीच बीच में सुनेंगे एक सुकून भरे मधुर गीत जो आपके दिल को और मन को तरोताजा कर देंगे। तो बने रहिए अरुण FM 103.1 MHz पर। तो देखते हैं आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्या खास है। आज 8 जून है। सबसे पहले आइए भारत के नजरिए से देखते हैं। वर्ष 1857 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झांसी में

विद्रोह 8 जून 1857 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झांसी में अंग्रेजी शासक के खिलाफ विद्रोह तेज हुआ। यह आंदोलन आगे चलकर पूरे उत्तर भारत में फैल गया और आजादी की लड़ाई का महत्वपूर्ण अध्याय बना। वर्ष 1948 भारत की पहली हवाई सेवा का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार 8 जून 1948 को एयर इंडिया ने मुंबई से लंदन के लिए अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू की। यह भारतीय नागरिक उड्डयन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। वर्ष 1969 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई दिशा 8 जून 1969 को भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों को संगठित रूप देने की प्रक्रिया तेज हुई, जिसने आगे चलकर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की मजबूत नींव रखी। वर्ष 2009 भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम 8 जून 2009 को नई केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, जिसने देश के प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा दी। भारतीय विज्ञान और तकनीकी विकास 8 जून के दिन विभिन्न वर्षों में विज्ञान, संचार और तकनीक से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका प्रभाव देश के विकास पर पड़ा। आइए विश्व इतिहास पर एक नजर डालते हैं। वर्ष 1949 जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास प्रकाशित 1984 8 जून को प्रकाशित हुआ, ये दुनिया की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में गिनी जाती है। वर्ष 1966 एनएफएल और एएफएल के विलय की घोषणा, अमेरिका के दो प्रमुख फुटबॉल लीगों के विलय की घोषणा 8 जून वर्ष 1966 को हुई, जिसने आधुनिक पेशेवर फुटबॉल को नई पहचान दी। 2004 शुक्र ग्रह का दुर्लभ पारगमन 8 जून 2004 को पृथ्वी से शुक्र ग्रह का सूर्य के सामने से गुजरना दिखाई दिया। यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना थी, जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों और खगोल प्रेमियों ने देखा। तो दोस्तों, 8 जून का दिन भारत की उद्यान उपलब्धियां, स्वतंत्रता संघर्ष और वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ विश्व इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। इतिहास हमें बताता है कि ज्ञान, साहस और दूरदृष्टि से ही नई ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं। और अब इसी प्रेरणादायक सोच के साथ बढ़ते हैं एक खूबसूरत म्यूजिकल ब्रेक की ओर। सुनते रहिए हेलो ईटानगर, आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम हेलो ईटानगर। दोस्तों, आज 8 जून है और ये दिन पूरी दुनिया में एक बेहद महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हमें महासागरों के महत्व और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। आज विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियंस डे है। हर साल 8 जून को पूरी दुनिया में वर्ल्ड ओशियंस डे मनाया जाता है। ये दिवस महासागरों के महत्व को समझने और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। महासागर क्यों महत्वपूर्ण है, क्या आप जानते हैं? पृथ्वी के लगभग 70% सतह महासागरों से ढकी हुई है। दुनिया की लगभग आधी ऑक्सीजन महासागरों से ही प्राप्त होती है। करोड़ों लोगों की आजीविका समुद्र पर निर्भर है। महासागर पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? विश्व महासागर दिवस का विचार पहली बार वर्ष 1992 में अर्थ समिट के दौरान सामने आया था। बाद में यूनाइटेड नेशंस ने इसे आधिकारिक मान्यता दी और तब से हर वर्ष 8 जून को यह दिवस मनाया जाता है। महासागरों के सामने चुनौतियां क्या क्या है? आज महासागर कई समस्याओं का सामना कर रहा है।

से प्लास्टिक प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना, जलवायु परिवर्तन, प्रबल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स का नष्ट होना, समुद्री प्रदूषण, इन समस्याओं का असर समुद्री जीवों और पूरी पृथ्वी के पर्यावरण पर पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक का कम उपयोग करें, कचरे का सही निपटान करें, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाएं, जल स्रोतों और समुद्री तटों को स्वच्छ रखें, समुद्री जीवन के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं। दोस्तों आइए हेलो ईटानगर कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत। आवाज दी है अलका याग्निक, कुमार शानू और सोनू निगम ने फिल्म क्या यही प्यार है से।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का हेलो ईटानगर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार।

0: परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। बहुजन हिताय आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलीपींस के ज्वालामुखी विज्ञान और भूकंप विज्ञान संस्थान के अनुसार भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप पर जनरल सेंटोस शहर से 13 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इंडोनेशिया के उत्तरी

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimedes. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का फिर से स्वागत है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं बॉलीवुड के ताजा तरीन अपडेट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेंड कर रहा है और इस वीक कौन सी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाले हैं और कुछ ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सुनते हैं श्रेया घोषाल के आवाज में फिल्म जहर से आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत को।

दोस्तों, मनोरंजन की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप, जहां बात होती है बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया की सितारों की दिलचस्प कहानियां की और मनोरंजन जगत की हर उस खबर की जो इस वक्त बनी हुई है चर्चा का विषय। आइए आज के ताजा तरीन बॉलीवुड अपडेट्स पर एक नजर देखते हैं। आमिर खान की शादी की खबर पर राखी गुलजार का बड़ा बयान, जहां एक तरफ आमिर खान और उनकी

साथी गौरी स्प्रत की जुलाई में होने वाली शादी की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं। वही अब दिग्गज अभिनेत्री राखी गुलजार ने इस पर खुलकर समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि प्यार और शादी की कोई उम्र नहीं होती। इंडस्ट्री में भी कई लोग आमिर के इस फैसले को समर्थन कर रहे हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर इस विषय पर काफी चर्चा हो रही है। लगान के 25 साल पूरे रीयूनियन की तैयारी। बॉलीवुड के सबसे यादगार फिल्मों में से एक लगान इस साल अपने 25 साल पूरे कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की पूरी टीम के एक खास रीयूनियन इवेंट की तैयारी चल रही है। फैंस पहले से ही सोशल मीडिया पर पुराने गाने, डायलॉग और यादें साझा कर रहे हैं। लव एंड वॉर को लेकर बड़ी उत्सुकता। निर्देशक संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म लव एंड वॉर लगातार चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में फिल्म से जुड़े कोरियोग्राफर ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के एक विशेष सीक्वेंस को मैजिकल बताया। दिलचस्प बात यह है कि इसे गाना नहीं बल्कि कहानी का एक खास भावनात्मक हिस्सा बताया जा रहा है। माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की मुलाकात बनी चर्चा का विषय। हाल ही में एक स्क्रीनिंग इवेंट में माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर एक साथ नजर आए। दोनों को साथ देखकर 80s और 90s के फैंस भावुक हो गए। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने फिर से इन दोनों को किसी रोमांटिक फिल्म में देखने की इच्छा जताई। तेजाब, बेटा, रामलखन की यादें फिर से ताजा हो गई। दोस्तों दोस्तों हम इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौटेंगे बॉलीवुड की और ताजा तरीन खबरों के साथ। बने रहिए फिल्मी गपशप में।

दोस्त दोस्त बता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ताजा ट्रेंड अपडेट्स पर एक नजर। बंटवारा को लेकर बढ़ रहा है बज। पहले लाहौर 1947 के नाम से चर्चा में रही फिल्म अब बंटवारा के नाम से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बदलाव के पीछे काफी विचार विमर्श हुआ और अब फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है। सनी देओल और देशभक्ति वाला विषय हो तो चर्चा अपनी आप बन जाती है। रणबीर कपूर की रामायण पीर चर्चा में। फिल्म इंडस्ट्री में इस समय सबसे ज्यादा प्रतीक्षित प्रोजेक्ट्स में है एक रामायण। निर्देशक इम्तियाज अली ने हाल ही में कहा कि भगवान राम का किरदार निभाना रणबीर कपूर के लिए एक समृद्ध अनुभव साबित होगा। इस बयान के बाद फिल्म फिर से चर्चा में आ गई है। जून 2026 बना बॉलीवुड का सबसे बिरंत वाला महीना। इस समय इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चर्चा फिल्मों के रिलीज डेट को लेकर है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि जून 2026 में एक के बाद एक बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है, जिससे स्क्रीन शेयरिंग और बॉक्स ऑफिस क्लैश की स्थिति बन सकती है। आने वाले हफ्तों में मैं वापस आऊंगा, कॉकटेल 2, वेलकम टू द जंगल और कई अन्य बड़ी फिल्मों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत अलका याग्निक और कमाल खान के आवाजों में, फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे से।

दोस्तों, हम फिल्मी गपशप के शेष भाग के साथ लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद। बने रहिए अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। दिलजीत दोसांझ की मैं वापस आऊंगा पर बर रहा है बज। अगले शुक्रवार रिलीज होने वाली मैं वापस आऊंगा को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया और ट्रेड सर्कल में इसे जून महीने की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में गिना जा रहा है। शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 पर फैंस की नजर। हालांकि फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है लेकिन कॉकटेल 2 को लेकर सोशल मीडिया पर काफी एक्साइटमेंट है। फैंस लगातार इसके पोस्टर्स, गाना और स्टारकास्ट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पहली कॉकटेल ने दोस्ती और प्यार की कहानी सुनाई थी, अब देखते हैं दूसरी कॉकटेल में क्या नया नशा है। अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल फिर चर्चा में। कॉमेडी फिल्मों के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। वेलकम टू द जंगल इस महीने के अंत में रिलीज होने वाली है। सबसे बड़ी मल्टी स्टार फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। अगर वेलकम फ्रेंचाइजी का नाम हो तो हंसी की गारंटी लगभग पक्की मानी जाती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच बड़ी बड़ी टक्कर। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सोनी लीव और G5 इस महीने कई बड़े रिलीज लेकर आ रहे हैं। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म सिर्फ फिल्मों के बाद का ठिकाना नहीं रहे बल्कि वे खुद बड़े प्रीमियर इवेंट बन चुके हैं। फिलहाल फिल्मी गपशप में सुनते हैं एक और गीत, सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म छल मेरे भाई से। ये अगला गीत

दोस्तों आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप। एकता कपूर का बर्थडे सेलिब्रेशन बना चर्चा का विषय। टीवी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े निर्माता एकता कपूर के जन्मदिन पर कई टीवी सितारों ने सोशल मीडिया पर खास संदेश साझा किए। खासकर अंकिता लोखंडे और क्रिसल डिसूजा की पोस्ट खूब चर्चा में रही। टीवी की क्वीन के जन्मदिन पर पूरी इंडस्ट्री एक साथ जश्न मनाती नजर आई। नॉस्टैल्जिया कंटेंट का जबरदस्त दौर। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर इन दिनों पुराने बॉलीवुड गाने, 90s के डायलॉग और क्लासिक फिल्मी सीन फिर से वायरल हो रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर नॉस्टैल्जिया बेस्ड वीडियोज पर खूब व्यूज बटोर रहे हैं। तो पुराने गानों का जादू ऐसा है कि नई पीढ़ी भी उन्हें अपने रील्स में इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं आने वाले हफ्ते की ओटीटी और थिएटर रिलीज की गाइड। आप सबको अगर आप सोच रहे हैं कि अगले सप्ताह क्या देखें, तो आपके लिए पूरी लिस्ट लेकर हाजिर हूं। चलिए देखते हैं थिएटर और ओटीटी पर क्या क्या नया आने वाला है इस सप्ताह। सबसे पहला है मैं वापस आऊंगा। इसके रिलीज डेट है 12 जून 2024। स्टारकास्ट दिलजीत दोसांझ, सरवरी, बेडांग रैना और नसरुद्दीन शाह। निर्देशक है इम्तियाज अली। कहानी 1947 के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर आधारित एक प्रेम कहानी जिसमें प्यार, बिछड़ना और यादों का भावनात्मक सफर दिखाया गया है। संगीत दिया है A.R. रहमान ने। तो इस हफ्ते की सबसे चर्चित और कंटेंट ड्राइवन फिल्म यही मानी जा रही है। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक। सुनते हैं सोनू निगम और सारिका कपूर की आवाजों में ये अगला गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। चाह होती है दिल से दिल की बात। हम बात कर रहे हैं आने वाले वीक में OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म और वेब सीरीज जो रिलीज होने जा रहे हैं

अगला हम बात कर रहे हैं राग। ये 12 जून को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा। स्टार कास्ट है अली फाजल, सोनाली बेंद्रे। 1970 के दशक की दिल्ली में बच्चों के अपहरण की घटनाओं के बीच चलने वाली एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा है ये। 12 जून को ही रिलीज होगा नेटफ्लिक्स पर भूत बंगला। ये इस सप्ताह की सबसे चर्चित ओटीटी फिल्मों में शामिल है। हॉरर और कॉमेडी का मिश्रण देखने को मिलेगा। इस सप्ताह ओटीटी पर रिलीज होगा। और करुप्पू, साउथ इंडियन कंटेंट पसंद करने वालों के बीच ये काफी चर्चा में है। एक्शन और थ्रिलर का तगड़ा मिश्रण बताया जा रहा है। तो 19 जून को रिलीज होगा कॉकटेल 2। स्टार कास्ट है शाहिद कपूर, कृति सेनन, रश्मिका मंदाना। इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त उत्साह है। तो दोस्तों, ये था अपकमिंग वीक में रिलीजेस होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज की जानकारी। फिल्हाल फिल्मी गपशप में एक और गीत सुनते हैं। आइए, आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म बीर जारा से ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों आइए सुनते हैं फिल्मी गपशप कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत। आवाज दी है जगजीत सिंह ने फिल्म तुम बिन से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत शुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की 12 साल की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के केंद्र में गरीब कल्याण और समाज के वंचित वर्ग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रही है और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंच सके जो दशकों से पीछे छूट गए थे। कोलकाता के जाधवपुर स्टेशन के पास कल रात अवैध फेरी वालों को हटाने की कार्रवाई के दौरान तनाव बढ़ गया। दरअसल वामपंथी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कार्रवाई का विरोध करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद केंद्रीय बलों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सृजन भट्टाचार्य समेत कई वामपंथी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। मौसम विभाग ने कहा कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ साथ देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने आज तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान जताया है। मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा

0: Tennis, Germany's Alexander Zverev clinched his maiden Grand Slam, defeating Italy's Flavio Cuboli in a thrilling five-set final to win the French Open crown at Roland Garros. And that is the end of this news bulletin.
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम लौटेंगे आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: नमस्कार प्यारे दोस्तों और संगीत प्रेमी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपका आरजे दोस्त कार्ग, लेकर हाजिर हूं आप सबका फेवरेट म्यूजिकल प्रोग्राम रेडियो ऑन डिमांड पर। दोस्तों, ये एक ऐसा शो है जहां हर गाना किसी न किसी की यादों से जुड़ा होता है, हर फरमाइश के पीछे होती है एक कहानी और हर डेडिकेशन में छुपा होता है देर सारा प्यार। आप हमें भेजते हैं अपने टेक्स्ट मैसेज जिनमें होता है आपका नाम, आपकी जगह, आपका फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग और उन लोगों के नाम जिन्हें आप वो गीत डेडिकेट करना चाहते हैं। हमारा नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9436887808 और फिर हम आपकी फरमाइश को पहुंचाते हैं हजारों श्रोताओं तक सिर्फ अरुण एफएम के इस सुरीली मंच पर। तो अगर आप भी अपने दोस्तों, परिवार वालों या किसी खास शख्स को एक म्यूजिकल सरप्राइज देना चाहते हैं तो भेजते रहिए अपने एसएमएस और जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला मैसेज और ये पहला मैसेज हमें आया है सानू प्रधान जी से, गोपुर असम से। सानू जी, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सानू जी ने हमें अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजी है लेकिन अफसोस की बात है कि उनका मैसेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है। सानू जी, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया अपने अगले मैसेज में गाने के बोल, सिंगर के नाम और अगर हो सके तो फिल्म का नाम भी जरूर लिखिए। और दोस्तों, खास बात यह है कि सानू जी ने कल भी यही मैसेज भेजा था, इसलिए हम चाहेंगे कि अगर इस वक्त सानू जी हमें सुन रहे हों तो अपने रिक्वेस्ट को थोड़ा सा करेक्ट करके दोबारा भेज दें। हम आपकी फरमाइश को कल के प्रोग्राम में जरूर शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल सानू जी, आपके लिए हम अपने म्यूजिक लाइब्रेरी से एक बहुत ही खूबसूरत गीत प्ले कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह गीत आपको और हमारे सभी श्रोताओं को पसंद आएंगे। तो सानू जी और हमारे सारे श्रोताओं के लिए प्ले करते हैं आज के रेडियो ऑन डिमांड का पहला नगमा।

और दोस्तों, अब बारी है एक बहुत ही खास दोस्ती भरे गीत की। ये मैसेज हमें भेजा है रोमेश पात्रो, रोनू पात्रो और लकी ने गोलाघाट असम से। आप सभी को अरुण एफएम पर हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, इस गीत को डेडिकेट किया गया है अमोल, बिमल, बाइकोन, जोगिंद्र, रोमेश और हितेंद्र जी को। इनकी फरमाइशी दोस्ती को समर्पित एक यादगार और एवरग्रीन गीत सलामत रहे दोस्ताना हमारा, फिल्म दोस्ताना से। दोस्तों, ये गाना सच्ची दोस्ती, अपनापन और रिश्तों की मजबूती को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। तो रोमेश पात्रो, रोनू पात्रो और लक्की जी, आपकी इस प्यारी फरमाइश और दोस्ती भरी डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। और दोस्तों अब बारी है एक और प्यारी सी फरमाइश की। ये संदेश भेजा है रूपाली मुंडा ने। रूपाली जी, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपने जिस गीत की फरमाइश की है, दुनिया में आए हो तो दारू पी लो। अफसोस रूपाली जी, ये गीत हमारे म्यूजिक सिस्टम में उपलब्ध नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए हम इसी बोल से मिलता जुलता एक खूबसूरत गीत लेकर आए हैं, दुनिया में आए हो तो, फिल्म जुड़वा से। रूपाली जी, उम्मीद है कि हमारी ये पसंद आपको जरूर पसंद आएगी और आप इस गीत को भरपूर आनंद लेगी। आपकी फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दोस्तों, हम रेडियो डिमांड के शेष भाग में लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात
4: बस आपके नाम
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज।

ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड में। और दोस्तों, अब बारी है खूबसूरत परमाइश की। यह संदेश भेजा है हमारे पुराने रेगुलर लिस्नर ज्योति सुरेन जी ने। हेलो असम से ज्योति जी, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका हार्दिक स्वागत है। इनकी पसंद है एक बहुत ही मधुर और दिल को छू लेने वाला गीत, भूल जाएंगे हम सारी दुनिया के गम, फिल्म कुछ मीठा हो जाए से। दोस्तों, ये गीत अपनी खूबसूरत धुन और रोमांटिक एहसासों की वजह से श्रोताओं के दिलों में एक खास जगह रखता है। तो ज्योति सुरेन जी, आपकी इस प्यारी सी फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। दोस्तों अगला मैसेज हमें आया है आरब जी का, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से। आरब जी, अरुण एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आरब जी ने हमें अपना मैसेज भेजा है, लेकिन उनकी सॉन्ग रिक्वेस्ट थोड़ी सी क्लियर नहीं है। आरब जी, अगली बार जब आप हमें मैसेज भेजे तो कृपया गाने का नाम, सिंगर का नाम और अगर हो सके तो फिल्म का नाम भी जरूर मेंशन कीजिए। इससे हमें आपके पसंद के गीत ढूंढने में, प्रोग्राम में शामिल करने में आसानी होगी। अगर इस समय आप हमें सुन रहे हैं तो अपनी रिक्वेस्ट को थोड़ा सा डिटेल में दोबारा भेज दीजिए, हम उसे आने वाले प्रोग्राम में जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आरब जी, आपके लिए हम अपनी म्यूजिक लाइब्रेरी से एक खूबसूरत गीत प्ले कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये गाना आपको और हमारे सभी श्रोताओं को जरूर पसंद आएंगे।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों, अब बारी है एक और दिल से भेजी गई फरमाइश और खास डेडिकेशन की। ये मैसेज भेजा है अमाल बासुमतारी ने। अमाल जी, अरुण एफएम पर आपका दिल से स्वागत है। और दोस्तों, अमाल जी ने इस गीत को डेडिकेट किया है रोमेश, जोगेंद्र, बीमल, बाइकोन, अस्मिता, कल्पना, रूनू और कविता जी को। इनकी पसंद एक बहुत ही मधुर और दिल को छू लेने वाला गीत, जाते हो परदेश पिया, फिल्म जीना तेरी गली में से। दोस्तों, ये गीत जुदाई के एहसास और प्यार की गहराई को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता है। तो अमाल जी, आपकी इस प्यारी फरमाइश और खूबसूरत डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

और दोस्तों, बारी है कर्ब अंगलोंग से आए एक और खूबसूरत मैसेज की। यह मैसेज हमें भेजा है जोगेंद्र रोंगफी, दोरम किरी रोंगपी और सोनाली इंग टिफी ने, ग्राम सरेहजान, जिला कर्ब अंगलोंग से। और आप सभी को और एनएफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्यार भरा नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक बहुत ही मधुर और सदाबहार गीत, पराई हूँ पराई मेरी आरजू ना कर, फिल्म कन्यादान से, गाया है लता मंगेशकर ने। दोस्तों, लता जी की सुरीली आवाज और इस गीत के भावपूर्ण बोल इसे हिंदी सिनेमा के यादगार गीतों में शामिल करते हैं। तो जोगेंद्र, दोरम किरी, सोनाली जी, आपके इस लाजवाब फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, प्ले कर रहे हैं आज के रेडियो ऑन डिमांड के अंतिम गीत को।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आज का ये अंग आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। तो इसी के साथ अब हम आज के पहली प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आगे के सफर में आपके साथ होंगे आरजे बामिन सुम्पी जी। और आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो साथी कारगर युवा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशन का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
3: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामनाएं।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said that India has witnessed many transformations, and at the core of these changes

फिक्र थी। जी हाँ श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 MHz पर। अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आप इससे पहले बने हुए थे हमारे पहले प्रसारण में आरजे कारगे के साथ, और श्रोता अब आप सुन रहे हैं हमारे दूसरे ट्रांसमिशन को मेरे साथ यानी कि आपकी रेडियो साथी वामिन सुब्बी के साथ। और श्रोता आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के इस प्रसारण के सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक गैर इतर और तकनीकी अभियंता नंद कुमार। तो चलिए श्रोताओं, शुरू करते हैं हमारे इस सभा के पहले कार्यक्रम को यानी कि कार्यक्रम फिल्मी लहर को।

प्यारे श्रोताओ, आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म सागर से। ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गीत। श्रोताओ, हम आज आपको इस कार्यक्रम में डिंपल कपाड़िया के कुछ खूबसूरत गाने सुनवाएंगे, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। जी हाँ श्रोताओ, आज डिंपल कपाड़िया मना रहे हैं अपना 69वां जन्म दिवस। तो आइए इसी मौके पर उनके कुछ गाने सुनते हैं।

प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हमारा कार्यक्रम फिल्मी लहर। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम के तहत हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं, या फिर आपके पास हमारे कार्यक्रमों को बेहतर करने के लिए और भी कई सुझाव है तो आप हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। हमारा नंबर है 9436887808 पर आप इस नंबर पर हमें मैसेजेस कर सकते हैं, हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, डिंपल कपाड़िया और अक्षय खन्ना पर फिल्माया गया फिल्म दिल चाहता है का ये गीत।

श्रोता, आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम फिल्म लहर। चलिए श्रोता, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है पाश्चात्य गीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम वैसे मेलेडी। सबसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों

0: पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूँ। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जांच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfer, DBT, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor. The Prime Minister said the journey of Garib Kalyan has become a collective movement towards human empowerment and realizing the dream of a Vikasit Bharat. West Bengal is set to implement Ayushman Bharat Pradhan.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

हम आपको हिंदी फिल्मी गीतों को छोड़कर हिंदी के कुछ बेहतरीन एल्बम्स के गानों को आपके लिए पेश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पहले गीत से, बैन आसमा का ये गीत।

0: श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं सुपरस्टार अली जफर के एल्बम का ये गीत। इस गीत को लिखा है, कंपोज किया और गाया है खुद अली जफर ने, और ये बहुत ही पॉपुलर हुई थी ये गीत। तो आइए सुनते हैं इस गाने को।
1: Behavior of choice this evening. Do I sound a little cheesy? Where's the money? Where's the money?

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन फिल्म सॉन्ग सरोन FM 103.1 MHz पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं वो

दरअसल 1949 में आई क्लासिक फिल्म बरसात के दिग्गज संगीतकार शंकर जयकिशन के गाने हवा में उड़ता जाए का रिमिक्स है और इस गाने को बॉम्बे वाइकिंग्स ने यानी कि नीरज श्रीधर ने अपनी बेहतरीन आवाज और म्यूजिक स्टाइल में गाया था। तो आइए सुनते हैं बॉम्बे वाइकिंग्स का ये गीत हवा में उड़ती जाए।

प्यारे श्रोताओ, आप बने हुए थे हमारे साथ कार्यक्रम नॉन फिल्म सॉन्ग्स में। और चले श्रोता, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है कार्यक्रम गीतमाला। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को।

श्रोताओ, आप सभी को जैसे पता है ये कार्यक्रम गीतमाला खास करके हमारे वीर जवानों के लिए है, हमारे फौजी भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, जो अगर अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ थोड़ा समय निकाल कर अगर हमें सुन रहे हैं तो ये आप सभी के मनोरंजन के लिए खास करके ये कार्यक्रम बनाया गया है। तो इस कार्यक्रम में हम आज बात करते हैं उनके सेक्रीफाइसेस के बारे में। हमें ये तो पता है कि हमारे वीर जवान जो है बहुत ज्यादा बहादुर हैं, उनकी बहादुरी की काफी बातें करते हैं, लेकिन वो वहां तक पहुंचने के लिए जो इस वक्त हमारे बॉर्डर पर तैनात होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं वहां पर वो पहुंच चुके हैं, लेकिन पीछे काफी सारी चीजें, काफी सारी यादें, काफी सारे लोग छूट जाते हैं। और अगर लड़कों की बात करें तो वो खास करके आमतौर पर अपनी मां से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, तो अपने बहुत सारे पल माँ के साथ गुजारना, उनके साथ बड़ा होना, वो सब मिस कर रहे हैं। तो आइए इसी बात पे ये प्यार भरा गाना आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, हमारे सोल्जर्स जो है, हमारे वीर जवान, वो अपने दोस्तों को बहुत मिस करते होंगे, अपने स्कूल के फ्रेंड्स को, कॉलेज के फ्रेंड्स को काफी याद करते होंगे, और उनके फ्रेंड्स अपने लाइफ में काफी आगे बढ़ गए होंगे। और हम चाहे 9 to 5 अगर जॉब कर भी लेते हैं, तो हम हफ्ते में एक या दो बार समय निकाल के अपने दोस्तों से मिल लेते हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं, पर हमारे सोल्जर्स जो है ऐसा नहीं कर पाते हैं। और वो क्या करते हैं, अपने यादों के एल्बम्स में जाते हैं और अपने दोस्तों के मेमोरीज को याद करते हैं।

अगर किसी पर मर मिटने को इश्क कहते हैं तो एक फौजी से बड़ा कोई आशिक नहीं जना। जी हाँ दोस्तों, फौजी का अपने भारत माँ के लिए प्रेम, अपने भारत माँ के लिए प्यार हम सभी को पता है, लेकिन एक और प्यार है उनके जीवन में, उनके जीवन साथी का प्यार जो उन्हें ताकत देता है, उन्हें शक्ति देता है। और इस वक्त ना जाने कितनी सारी लड़कियां घर बैठे अपने जीवन साथी की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हो, और हमारे वीर जवान जो है उनके साथ कुछ पल बिताना, ये सारी चीजें सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं श्रोता। तो आइए इन सारी सेक्रीफाइसेस को याद करते हैं, ये गीत आप सभी श्रोताओं के लिए सुनवाते हैं।

श्रोताओं, परिवार का प्यार और भाई बहन का प्यार अलग ही एहसास होता है। इस कमी को कोई और पूरा कर ही नहीं सकता है। हम नॉर्मल सिटीजन्स जो अपने परिवार के साथ बिताए समय, पल या प्यार को हम जो बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, हमारे वीर जवान जो है इन सारी चीजों को मिस कर रहे हैं। ऐसे कितने सोल्जर्स होते होंगे जो अपने सिबलिंग्स के ग्रेजुएशन मिस कर दिए, उनके बर्थडेज मिस कर देते हैं, या अपने फैमिली के, अपने पेरेंट्स के एनिवर्सरीज मिस कर देते हैं। तो इन सारी इमोशंस के लिए, इन सारी इमोशंस को एक नाम देते हुए आइए हम ये गीत आप सभी के लिए प्ले करते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमाला, और आप इस कार्यक्रम को सुन रहे थे अरुण FM 103.1 MHz पर। अरुण FM, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर में यानी कि ठीक एक बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने

0: नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में चार स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूँ। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfers, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor. West Bengal is set to implement the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, marking a significant step towards expanding healthcare coverage in the state. The National Health Authority and Government of West Bengal will sign a Memorandum of Understanding in New Delhi today in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. Under the Trinamool Congress regime, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was not implemented in the state. Trinamool Congress strongman Jahangir Khan was arrested early this morning by the West Bengal police. He was apprehended near the Nepal border. He was reportedly attempting to flee across the border when STF officials, acting on a secret tip-off, intercepted and detained him. The arrest comes in the wake of the Palta Assembly re-election held on the 21st of last month, just 48 hours before polling. Jahangir

0: श्रोता वरुण एफएम पर अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, यानी कि आपके फरमाइशों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश का।
1: हेलो फरमाइश,
2: हेलो फरमाइश,
3: हेलो फरमाइश
2: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार, मैं आसाम हाइलाकांदी से बोल रहा हूँ, बनीबिस से बपन आचार्य।
2: बपन जी, जी जी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप?
3: हाँ जी, मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ।
3: अच्छा अच्छा, और बारिश भी हो रहा है हमारे यहाँ पे, मौसम थोड़ा मतलब खराब है।
2: खराब है मौसम? बारिश होने से तो अच्छा होना चाहिए, ठंडी होगी।
3: दिन रात एक ही मतलब
2: ओके ओके ओके,
3: इसलिए थोड़ा खराब हो गया,
2: कंटिन्यू हो रहा है ना बारिश। ओके okay, हमारे यहाँ पे भी वैसा ही है, बारिश लगातार हो रही है। जी जी,
3: तो आपके साथ बात हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब दिल को बहुत सुकून मिल रहा है अभी।
2: जी हमें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है।
3: हाँ जी, जरूर जरूर।
2: जी जी जी,
3: ठीक है, आज का गाना सुनना चाहता हूँ।
2: हाँ जी जरूर, कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे?
3: आज गाना सुना दीजिए, दीवाना मूवी से।
2: दीवाना मूवी से? ओके,
3: ऐसा गाना तो मैं सुर में गा के सुनाऊँ या?
2: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, गा के सुनाइए। हाँ जी,
3: अच्छा ठीक है। तेरा दर्द से दिल आवाज़ दे रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, वो गाना सुना।
2: क्या बात है क्या बात है, आप गाते भी अच्छा हैं बापुन जी। जी जी जी, सुनकर
3: नहीं,
2: अच्छा
3: थोड़ा
2: लगा।
3: थोड़ा मतलब ट्राई करता हूँ।
2: जी जी जी,
3: गाने
2: जो
3: से मतलब दिल, गाने से मतलब दिल को थोड़ा सुकून मिलता है,
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
3: चैन
2: सही
3: मिलता
2: कहा।
3: है।
2: जी
3: हाँ
2: जी जी
3: जरूर
2: बिल्कुल
3: जरूर,
2: सही कहा। जी
3: तो मेरा साथ श्रोता है, पहले मेरा बकेशा जी के लिए,
2: थैंक यू। हाँ जी,
3: और अनुप कुमार भट्टाचार्य है, सतवा भट्टाचार्य है, सिंधु दास जी है, और अभी जो श्रोता सुन रहे, सारी श्रोता के लिए।
2: सभी को आप सुनाना चाहते हैं? जी जी,
3: हाँ
2: तो
3: हाँ ठीक
2: बापुंदा
3: है,
2: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते
3: हाँ
2: हैं आपके
3: ठीक है,
2: पसंद का
3: धन्यवाद,
2: गाना। ओके
3: नमस्कार
2: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार, आकाशवाणी ईटानगर।
0: नमस्कार आकाशवाणी ईटानगर, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: सर आपका भी स्वागत करता हूँ, और मैं हूँ आपका आकाशवाणी का रेडियो श्रोता श्रीकांत जोशी महाराष्ट्र से।
0: जी श्रीकांत जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप?
1: सर बहुत अच्छे हैं।
0: ओके।
1: और प्रोग्राम सुनते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा चेक किया, थोड़ा बदलाव आ रहा है प्रोग्राम में।
0: ओके थैंक यू।
1: पहले हम सोमवार को रिकॉर्डिंग करते थे, अब गुरुवार के दिन रिकॉर्डिंग करने लगे।
0: जी जी जी, सोमवार और गुरुवार दोनों दिन होते हैं आजकल रिकॉर्डिंग।
1: जी।
0: तो कहिए श्रीकांत जी, आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: आज गाना सुनने का है मुझे, एक दूजे के लिए प्रेम का गाना सुनने का है, क्योंकि आकाशवाणी और हम श्रोता सब एक दूजे के साथ रहते हैं।
0: हाँ जी,
1: हम बने एक दूजे के लिए ये गाना सुनने का।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये रिक्वेस्ट रखा है, फरमाइश रखा है, जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों को आप सुनाना चाहेंगे?
1: सर पहले तो आपके लिए डेडिकेट करेंगे, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी जानकारी देते हैं हम समय समय पर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी जी,
1: पहले आपके लिए और आपके आकाशवाणी में जितने भी उद्घोषक हो आप सर के, उन सबके लिए
0: जी,
1: और आकाशवाणी की में आकाशवाणी के जितने भी श्रोता ईटानगर में रहते उनके लिए
0: जी,
1: और जो अनुप कुमार भट्टाचार्य, सत्योपा भट्टाचार्य, अर्जुन प्रधान जी पप्पुरम घाटे, और उड़ीसा से चित्रसेन जी और मनोज कुमार, उनके लिए।
0: ओके तो श्रीकांत जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है।
1: मेरा शुभ नाम है देवजीत दास और मेरा गांव का नाम है बद्रीपाठ डिस्ट्रिक्ट के कचर आसाम से। कुछ नाम दिल से मिटाए नहीं जाते, कोई दोस्ती को चेहरे बुलाया ना जाते, मुलासा तो ये मेरे दोस्ती की सिरा मिटाया न जाती।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शुरुआत देवजीत दा। और कहिए आपके वहाँ पर मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम तो अभी तो अच्छा है, अभी तो बारिश नहीं।
0: अच्छा,
1: सुबह 7-8 बजे बारिश हुई बहुत।
0: ओके जी,
1: तो आपका वहाँ पर मौसम कैसा है?
0: हाँ जी, हमारे यहाँ पे भी बारिश हो रही है, बढ़िया है मौसम, बहुत ही बढ़िया है जी। तो कहिए, बढ़िया मौसम में आप कौन सा बढ़िया सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज तो मैं बारिश का तो मौसम चल रहा है तो आपका वहाँ पर तो मैं एक बारिश का गाना सुनना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है 1942 ए लव स्टोरी
0: ओके।
1: और गाने का बोल है, गाना गाया है कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति ने।
0: ओके जी।
1: और ये गाना भी है, रिम जिम रूम जुम बिगी बिगी ऋतु में तुम हम तुम।
0: वाह वाह वाह, बारिश के मौसम में बारिश का बढ़िया सा गाना। और किन लोगों को आप डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: पहले मेरा पिताजी सुनेगा जितेन कुमार दास और माताजी है शिल्परानी दास, बड़े भैया है जयजीत दास और आपके लिए सर गाना भी।
0: थैंक
1: और
0: यू।
1: ये गाना कुछ मैं दोस्तों को सर डेडिकेट करूंगा।
0: जी जी
1: पहले
0: जरूर।
1: मेरा आसाम से है, मेरे बड़े भैया है अनुप कुमार भट्टाचार्या और है दीदी है छोटे बाबा भट्टाचार्य जी और है रामतो बाई और बापन दादा है और हैलाकंदी से हैलाकंदी चंडीपुर से मेरा बहन लवली दास और बबली दास और मेरा दादा है राजा मालाकार और मेरा दादा है जवाहरलाल बर्मन और है प्रेमजी दादा। और अभी जो आकाशवाणी ईटानगर में सुनते सारे श्रोताओं को गाना डेडिकेट
0: सारे
1: करूंगा।
0: श्रोताओं को आप डेडिकेट करना चाहते हैं। तो देवजीत दा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं 1942 ए लव स्टोरी फिल्म से।
1: बातें करके बहुत अच्छा लगा
0: जी, हमें भी बहुत ही अच्छा लगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है, नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं कतर से बोल रहा हूँ, जवाहरलाल बर्मन।
0: जी जवाहरलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे
1: सर? थैंक यू सर।
0: कैसे हो आप, सुनाइए।
1: मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत ही बढ़िया, मैं मजे में हूँ। और अभी फिलहाल कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप, घर से या फिर कहीं बाहर से?
1: नहीं सर, मैं अभी तो मैं सिलचर से फोन कर रहा हूँ।
0: अच्छा ओके।
1: जी हाँ, मैं सिलचर में 2 दिन से सिलचर में आया है
0: ओके। कुछ काम से?
1: तो। हाँ जी हाँ,
0: ओके ओके
1: कुछ काम
0: ओके।
1: से आया हूँ
0: अच्छा
1: सिलचर
0: अच्छा
1: से।
0: और आपका घर कहाँ पे है?
1: घर तो सर सिलचर से 7-8 किलोमीटर थोड़ा
0: अच्छा
1: दूर में है।
0: ओके, इतना दूर तो नहीं है ना? जी जी
1: जी
0: जी
1: हाँ
0: ओके, बढ़िया बढ़िया। तो काम कर लीजिए और काम के साथ साथ हमारा हेलो फरमाइश भी सुनिए।
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: सर, मुझे आज सुना दीजिए, वो 1982 में रिलीज हुआ डिस्को डेंसर।
0: ओह वाह वाह, क्या
1: जी
0: बात है।
1: हाँ,
0: जी
1: महान गीतकार अंजन जी ने लिखा है वो गाना, और महान सुरकार बाप्पी लाहिड़ी जी ने उस सुर में गाना सजाया है।
0: जी जी
1: सूर्या सवदेकर और उषा मंगेशकर के जुगल सर में। उस पिक्चर में अभिनेता राजेश खन्ना के साथ मास्टर छोटू ने अभिनय किया है, और वो गाना है गोरो की ना कालोन की दुनिया है दिल वालों की।
0: दुनिया है दिल वालों की, क्या बात
1: जी हाँ
0: है।
1: जी
0: जी
1: हाँ,
0: जी जी
1: ये गाना मुझे बहुत याद है, क्योंकि 1982 में हम सब मिल के सर वो पिकनिक में गया था,
0: ओके। हाँ
1: और वो पिकनिक पे वो गाना माइक पर वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड में
0: अच्छा,
1: वो गाना हमेशा बजा था सर वो, और
0: ओ क्या
1: साथ
0: बात
1: में तो
0: है।
1: हम सब ने डांस किया है।
0: अच्छा ओके। जी जी
1: और
0: जी
1: खाना बना भी बहुत मजेदार हुआ
0: ओके।
1: और बहुत अच्छा लगा है,
0: जी जी जी बहुत ही बढ़िया जमाना था ना वो, पुराना
1: और
0: दिन
1: बहुत दूर में गया सर, वो पहाड़ी झरना पे हम सब गया है वो
0: पिकनिक
1: पिकनिक पे,
0: मनाने।
1: तो गाना सुनने से वो दिन याद आता है।
0: ओहो क्या बात है।
1: जी हाँ सर। जी हाँ
0: जी
1: जी
0: जी
1: हाँ,
0: ओके,
1: तो
0: जरूर
1: बहुत अच्छा
0: सुनाएंगे।
1: लगा क्योंकि आज मिल गया हेलो फरमाइश,
0: जी जी जी जरूर
1: और मेरा
0: मिलेगा।
1: मन के बात आपको साथ शेयर करने को वो मिल गया तो
0: जी
1: बहुत
0: बहुत ही
1: अच्छा
0: अच्छा लगता
1: लगता
0: है
1: है।
0: जवाहरलाल जी, जब भी आप अपने बारे में पुरानी यादें शेयर करते हैं,
1: जी
0: बहुत ही
1: हाँ
0: अच्छा लगा। हमें भी अपने पुराना जमाना का ये दिन याद आ जाता है। जी जी तो किन लोगों को आप डेडिकेट करना
1: सर,
0: चाहेंगे इस गीत
1: डेडिकेट
0: को?
1: तो करना चाहता हूँ सर, पहले आपकी
0: थैंक यू। जी
1: और प्रेमोजीत भाई है, और आशुतोष बाबू है, और अविनाश भाइया है, और सुनने वाले सब लिसनर्स के लिए सर।
0: ओके, सभी को आप सुनाना चाहते हैं।
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: जवाहरलाल जी सुनते हैं आपके पसंद का गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत
1: हाँ
0: धन्यवाद।
1: हाँ थैंक यू सर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश आर्मी महोदय, सादर नमस्कार जी।
0: नमस्कार आपको भी हमारी ओर से। कहिए कैसे हैं आप।
1: मैं धन्यवाद धन्यवाद, मैं
0: जी
1: आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आर्मी वागरा साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी ईटानगर से।
0: क्या
1: मानवर आप कैसे हैं?
0: क्या बात है शारदा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत ही बढ़िया हैं और हमारे यहाँ का मौसम भी बहुत ही बढ़िया है, बारिश हो रही है रिमझिम
1: अरे
0: ठंडी।
1: वाह,
0: जी जी जी
1: बधाई हो बधाई हो,
0: बहुत बहुत
1: आप
0: धन्यवाद।
1: तो आनंद से हैं। लेकिन हमारे यहाँ भगवान दिनकर भास्कर एकदम अपने प्रचंड किरणों की बरसात कर रहे हैं, गर्म गर्म हवाएं हैं, चिलचिलाती हुई धूप है, और ऐसे वातावरण में बस मैं घर के अंदर रहते हुए आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहता हूँ, आप लोगों से वार्तालाप करता हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन इस वक्त हमारे मथुरा वृंदावन रेड अलर्ट जारी है, मतलब लू चलने की।
0: लू चलने के लिए, बाप रे
1: जी
0: ये तो बहुत ही भयानक सिचुएशन है। कृपया अपने आपको बचाए रखे, लू से घर से बाहर ना निकले। जी
1: जी जी
0: हाँ
1: बिल्कुल,
0: जी
1: निसंदेह मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और इसमें अमल भी कर रहा हूँ।
0: जी
1: घर के
0: जी
1: अंदर रहता हूँ, बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक,
0: क्या बात है।
1: और मौसमी फलों का खूब सेवन कर रहा हूँ, ठंडे
0: ओके
1: पानी का सेवन करता हूँ, लेकिन फ्रिज का पानी नहीं पीता हूँ, नॉर्मल जो सामान्य पानी होता है
0: जी
1: उसी
0: जी
1: का
0: जी
1: उपयोग करता हूँ।
0: ओके बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से हम अपने आप को गर्मी से लू से बचा के रख सकते हैं।
1: जी
0: जी जी
1: बिल्कुल,
0: तो कहिए शारदा जी, आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं।
1: आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है ससुराल। एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूँ, हर सवाल का जवाब ही जवाब हो। ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी ईटानगर पहुँचाना हेतु।
0: जी जरूर सुनाएंगे। और डेडिकेशन
1: सर्वप्रथम हमारे परम आदरणीय वागरा साहब को याद करता हूँ
0: बहुत बहुत
1: और
0: धन्यवाद।
1: नूरी मैम को भी इस गीत में शामिल करता हूँ,
0: जी
1: और हमारे ब्रज रेडियो श्रोता मित्र हैं शर श्री अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता जी, लोकेन्द्र वर्मा है, राजू यादव जी हैं, राकेश कुमार जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, पुष्कर नाथ जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, और साथ में देवी शंकर शुक्ल हैं, विद्या रत्न शर्मा जी हैं, और विजय कुमार पांडे हैं। इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत झूमता हुआ आकाशवाणी ईटानगर सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी कॉल करने के लिए। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना ससुराल फिल्म से।
1: जी हृदय से धन्यवाद, सादर नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार। हेलो फरमाइश में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी सर, हम धेमाजी असम जुनून मिसा के सपोर्ट से बिमोल बसुमतारी बोल रहे हो सर।
0: जी बिमोल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप, सुनाइए।
1: जी सर, हम ठीक है
0: बढ़िया
1: अभी
0: है।
1: सर। जी
0: ओके, अभी दुकान में है आप?
1: सर, अभी थोड़ा खेत में हाल मार के आया हुआ है, अभी खाना पीना खाया, अभी जाएगा दुकान
0: अच्छा
1: में।
0: अच्छा अच्छा ओके ओके। मौसम कैसा है अभी, बारिश है या
1: मौसम
0: धूप?
1: सर अभी तो बारिश भी नहीं आया है, धूप भी नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा
0: ओ
1: ठंडा अच्छा है मौसम।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ओके। और हाल मानने के बाद कौन सा फसल, कौन सा बीज आप बोएंगे, क्या लगाएंगे
1: धान
0: खेती में?
1: का खेती करेगा सर
0: अच्छा,
1: हम लोग।
0: धान का ही खेती ना। ओके,
1: जी
0: और
1: जी
0: सब्जी वगैरह होता है आपके खेती में?
1: सब्जी वगैरह तो होता है सर, करने से तो होता है।
0: अच्छा। ओ, लेकिन आप ज्यादातर
1: जी
0: तो धान का खेती करते हैं।
1: सर, हम मेरा इतना
0: ओके
1: टाइम नहीं है ना, धान का खेती करके फिर दुकान में जाना पड़ता है,
0: ओ
1: इसलिए
0: जी
1: दूसरा
0: जी जी
1: खेती नहीं
0: जी
1: करते हम जाना।
0: ओके, ये डबल काम हो जाता है ना।
1: जी सर।
0: ओके ओके जी। तो कहिए, अभी फ्रेश होके कौन सा फिल्म का गाना आपको सुनाए?
1: जी सर, हमको करण उजन का ये गाना सुनने से हो जाए, जय मा काली, ये गाना
0: ओके जी, हाँ जरूर सुनाएंगे।
1: अच्छा लगता है सुन के।
0: ओके जी। और किन लोगों को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: जी सर, हम लोग का मेरा दोस्त लोग के लिए डिलीट करना चाहता हूँ। हम लोग का अमोल बसुमतारी, फाइकन मुंडा है, अंजलि बसुमतारी, सुनीता बसुमतारी, रमेश पत्र, सुखविला मेहता, रमेश प्रजापति, अंशुला बसुमतारी, पूरण वर्मा, अविनाश, दुर्गेश्वर नवनपुरी, हितेंद्र दास, जोगेंद्र रंगपी, गोल्डी, अविनाश, शिकारी रंगपी, भगवान सिंह, राकेश, और आपको भी सर सबके लिए डिलीट करना चाहता हूँ सर हम।
0: ओके, सभी को आप सुनाना चाहते हैं। तो बिमल जी,
1: जी
0: कॉल
1: सर।
0: करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं
1: जी सर, बहुत
0: जी।
1: ज्यादा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, कार्यक्रम ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, ग्राम आवास जिला यमुन बिहार।
0: ओके अनवर जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहली बार कॉल कर रहे हैं हमें?
1: जी हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज पहली बार आपके यहाँ मेरी कॉल लगी। मैं आपको और अपने सभी श्रोताओं को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई पेश करता हूँ।
0: जी जी जी, हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: तारों की ईदों से हमें क्या वास्ता गालिब, हमारा जो चांद दिख जाए हमारी ईद हो जाए। इधर से चांद हम देखें उधर से चांद तुम देखो, निगाहें जिन टकरा जाए हमारी ईद हो जाए।
0: क्या बात है, क्या बात है अनवर जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने शुरुआत की। और सबसे पहले हम आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने पहली बार हमें कॉल किया और उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप आगे भी जुड़ते रहेंगे हमसे।
1: बिल्कुल
0: जी जी जी जी। और ईद की क्या तैयारी है?
1: ईद की तैयारी है यही, सुबह सुबह उठे, नहाया धोया, नए नए कपड़े पहना, कुर्ता पजामा, ईदगाह गए, नमाज पढ़ी, वहाँ लोगों से मिले जुले
0: जी,
1: सब रिश्तेदारों के यहाँ गए। अब भी मुझे कहीं जाना है लेकिन मुझे याद आ गया कि आज ईटानगर में रिकॉर्डिंग है।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें याद किया।
1: रेडियो से मैं कभी भी पीछे नहीं रहता हूँ, हर जगह हर वक्त
0: जी
1: रेडियो की याद आती रहती है। मैं 12 साल दूर से रेडियो सुन रहा हूँ, 1988 से।
0: अरे वाह।
1: और रेडियो इस तरह से मेरे लिए समझिए खुली खुलाई किताब है।
0: जी।
1: गीत भी है, संगीत भी है, गजल भी है, फरमाइश भी है, इसमें आपको गाने भी हैं, मकालात भी हैं, मजामीन भी हैं, बहुत अच्छा लगता है। पुरानी बातें, पुराने ख्याल, रेडियो की पुरानी चीजें सुनकर बहुत अच्छा लगता
0: है।
1: आकाशवाणी का 90 वर्ष पूरा हो चुका है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं किसी तरह हमारा आकाशवाणी केंद्र चलता फूलता रहे परवान तौर पर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सुनने वाले कभी भी कम ना हो।
0: जी धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बात कही आपने अनवर जी। तो कहिए आज इस पाक अवसर पर हम आपको कौन सा फिल्म का गीत सुनाए?
1: मिल गया मुझे बहाना तेरी जीत का, ऐसी खुशी लेके आया चांद ईद का।
0: ओके
1: और मैं अपने दोस्तों का नाम ले लूँ अगर आप इजाजत दें।
0: जी जी जरूर जरूर। हाँ जी।
1: हसीना मंसूर बेगम, नजवान शाही, पूनम रजनी, बसंती ममता, रिजवाना शबनम, मोनिका, रिंकी तिवारी, तरन्नी लाल, खुशी खबारा, प्रेम खुशी, अफरा सैयद, लीला मंसारी, रानी अर्चना, पूजा, निशा, अनिता राघव, उदिता, सुजीता, मीना शर्मा, शाना शर्मा, सितारा बेगम, नसीम बेगम, शमा परिन, मोहब्बत बेगम, तबस्सुम, तरन्नुम, गायत्री, खालदा, नाजी हसन, पिंकी जी, सादिर वाना, गणेश लाल, बसंती लाल, अनु भट्टाचार्य हैं और आप हमारे साथ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने अपने दोस्तों का नाम लिया इसी से पता चलता है कि आप रेडियो के कितने दीवाने हैं।
1: शुक्रिया।
0: जी जी जी। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी सर जी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
0: जी लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: धन्यवाद
0: कहिए
1: सर जी।
0: जी और कहिए, क्या कर रहे हैं अभी?
1: बस बिल्कुल सर जी, दुकान जाने की तैयारी थी। आपसे चैनल की याद आई कि आज कॉल रिकॉर्ड कराना है, तो मैंने किस्मत अच्छी थी, फर्स्ट बार डायल किया और मेरा कॉल लग गया है।
0: जी जी जी जी कॉल जरूर लगेगा, आप तो हमारे रेगुलर श्रोता।

0: है
1: जी
0: जी
1: जी बिल्कुल सर जी,
0: ओके
1: आपके चैनल से जुड़े हुए 3-4 साल से ज्यादा हो गए हैं। अच्छा
0: जी
1: प्रोग्राम रहता है और
0: बस
1: अच्छी काफी मेहनत करते हैं आप प्रोग्राम को तैयार करने के लिए, क्योंकि एक प्रोग्राम को तैयार करने के लिए इतने 16 मित्रों की कॉल को रिकॉर्ड करना और कॉल के रिकॉर्ड के अनुसार उनके चॉइस के जो गाने रहते हैं उनको सेलेक्ट करना, टच मारना
0: जी
1: और ये सब करके प्रोग्राम की एडिटिंग करके एक प्रोग्राम 45 मिनट का बनाना, एक
0: जी
1: अपने आप में एक बहुत ही काम जो एडिटिंग का रहता है ये बहुत मेहनत वाला रहता है, ये मैं समझता हूँ इस चीज को।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने लोकेंद्र जी, बहुत ही मेहनत है इसमें भी। ऐसा नहीं है कि हम
1: क्योंकि
0: एसी के रूम में बैठे और आराम से रिकॉर्डिंग करें, गाना बजाएं, ऐसा
1: नहीं
0: नहीं
1: नहीं
0: होता
1: नहीं
0: है।
1: सर जी, हम समझते हैं
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: कि जो वीडियोग्राफी करने वाले रहते हैं और
0: हाँ
1: जो
0: जी हाँ
1: वीडियो के अंदर
0: जी
1: भी गाना ऐड करते हैं, तो
0: जी
1: ऐसा आपका भी बहुत उसके अंदर योगदान रहता है, इसलिए
0: जी
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी परिवार को भी धन्यवाद।
0: जी बहुत ही धन्यवाद। तो कहिए, सैलून जाने से पहले कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: आज गाना सुनना सर, ये हाथ की सफाई फिल्म का गीत है, इसमें गीत है वादा कर ले साजना तेरे बिना, ऐसा गीत
0: ओ
1: है
0: वाह वाह वाह जी, जरूर सुनाएंगे।
1: जी
0: और किन
1: सर
0: लोगों को
1: जी।
0: सुनाना चाहेंगे?
1: हमारे मित्र हैं शारदा प्रसाद जी हैं, सुनील झा जी हैं, राम बाबू मालवीय जी भोपाल से, योगेश जी हैं, गौतम जी हैं, तुकाराम जाधव जी हैं, गंगाधर जी हैं, और ये सभी हमारे हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप के लिए रहेगा और आकाशवाणी ईटानगर के लिए भी यह गीत रहेगा कि वादा कर ले साजना कि तेरे बिना हम न रहे।
0: तो लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना हाथ की सफाई फिल्म से।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
1: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
0: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
2: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
6: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
8: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
9: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
6: अमन यादव के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
10: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
2: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
11: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
2: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: श्रोताओ, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिडडे न्यूज और दोपहर समाचार, और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्यारे श्रोताओ, आइए अब वक्त हो चला है अरुण FM में कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का, तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को।

श्वेता, सुबह हमने आपको बताया था कि आज डिंपल कपाड़िया अपना जन्म दिवस मना रही हैं और साथ ही एक और सेलिब्रिटी है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, जिनका आज जन्मदिन है। जी हाँ दोस्तों, आज शिल्पा शेट्टी का भी जन्म दिवस है। तो आइए इस कार्यक्रम में हिट्स ऑफ 90s में हम शिल्पा शेट्टी के 90s के कुछ यादगार और कुछ धमाकेदार गीतों को सुनते हैं। तो शुरू करते हैं इस पहले गीत से, फिल्म में खिलाड़ी तू अनारी से सुनते हैं ये पॉपुलर संगीत।

श्रोताओ, अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म बाजीगर से, जो रिलीज हुई थी 1993 में, और इस फिल्म के साथ ही शिल्पा शेट्टी ने अपनी बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनका एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल था और इस फिल्म के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत जिसे गाया है आशा भोसले और विनोद राठौड़ ने।

श्रोताओं, माफ कीजिएगा, किसी कारणवश हम आपको इस वक्त ये गाना नहीं सुनवा पा रहे हैं। तो चलिए हम सुनते हैं शिल्पा शेट्टी के अगली फिल्म का गाना। ये फिल्म है आक्रोश, और आइए सुनते हैं इस फिल्म के गीत को जिसे गाया है अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: ชมนางเคียงนำนารีในสตูดิโอไม่จือกันมาว่าผ่าป่วยเนี่ยจะห้างมาไหนคำไทยคำดีโอตือใครไม่สุดยอดห่อ
1: श्रोताओं आप सुन रहे थे मिशमी कमान श्रोताओं और ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम जिसका प्रसारण किया जा रहा था मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओं आप हमें सुन पा रहे हैं NNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

आई श्रोताओ, आप जानते हैं बॉलीवुड की कुछ ताजा खबरें हमारे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट में। सनी देओल के इस साल की बड़ी पीरियड ड्रामा फिल्म, जिसका पहले नाम लाहौर 1947 रखा गया था, कथित तौर पर इसके नाम में बड़ा बदलाव किया गया है। राजकुमार संतोषी की निर्देशित और आमिर खान प्रोडक्शंस की बनाई इस फिल्म का नाम बदलकर बंटवारा कर दिया गया है। नए नाम से फिल्म को लेकर उत्सुकता पहले ही बढ़ चुकी है। वहीं आमिर खान ने इस नाम के राइट्स हासिल करने के बारे में नए खुलासे सामने किए आ रहे हैं। बंटवारा के टाइटल के राइट्स दिवंगत निर्माता सलीम अख्तर के परिवार के साथ थे, जिन्होंने 1989 में इसी नाम की फिल्म बनाई थी। आमिर खान ने व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार से मुलाकात की और उसके बाद राइट्स हासिल किए हैं। फिल्म की टीम ने इस बात पर अड़ी रही थी कि वह फिल्म का नाम लाहौर 1947 नहीं रखना चाहते थे। बंटवारा 1947 नाम तय किया गया था फिल्म का, लेकिन बाद में सभी ने ये डिसीजन लिया कि सिर्फ बंटवारा ही फिल्म का नाम रहना चाहिए। आगामी इस फिल्म में सनी देओल और फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी एक बार फिर साथ नजर आएंगे। आमिर खान भी फिल्म में सहायक भूमिका में दिखेंगे। बाकी कलाकार की बात करें तो प्रीति जिंता, अली फजल, करण देओल और शबाना आजमी शामिल हैं। फिल्म विभाजन काल की कहानी पर आधारित होने की उम्मीद है और यह सबसे बड़ी पीरियड ड्रामा में से एक है, खासकर इसीलिए क्योंकि इसमें सनी देओल, राजकुमार संतोषी और आमिर खान एक बड़े पैमाने के ऐतिहासिक सीन में साथ काम कर रहे हैं।

श्वेता, दूसरी खबर ये है कि इतने सालों बाद भी ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना की फिल्म ताल कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। सुभाष घाई इस फिल्म के निर्देशक थे और सिने प्रेमियों के दिल में इसकी अलग खास ही जगह है। अब सुभाष घाई इस लोकप्रिय रोमांटिक फिल्म का सीक्वल बनाने के बारे में सोच रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने फैंस को इसका हिंट दिया और उनसे एक सवाल भी पूछा है। सुभाष घाई ने लोगों से सवाल पूछा कि क्या उन्हें ताल 2 एक नई कास्ट के साथ बनानी चाहिए या फिर वो पुरानी कास्ट को ही देखना पसंद करेंगे। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में फिल्म निर्माता ने यह भी बताया कि उन्हें ताल के लिए अब तक की सबसे बड़ी तारीफ क्या मिली थी। उन्होंने बताया कि शिकागो में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान एक मशहूर हॉलीवुड समीक्षक ने इसे शुद्ध मनोरंजन और मासूमियत कहा था। अब ताल 2 के बारे में बात करते हुए सुभाष घाई कहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं भारत में किसी अन्य युवा प्रतिभाशाली निर्देशक और नए कलाकारों के साथ ताल 2 का निर्माण करूं?

अश्वता, अब ये तो देखना बनता है कि सुभाष गायताल फिल्म का सीक्वल नए निर्देशक या नए कलाकारों के साथ बनाते हैं या नहीं, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। चलिए अब आपका मनोरंजन करवाते हैं हम फिल्म ताल के इस गीत से, इस टाइटल ट्रैक से।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

किसी ने बहुत खूब फरमाया है, सुबह का पहला ख्याल हो तुम, मेरी रात की आखिरी याद हो तुम, कभी मीठी पवन सी तुम तो कभी मीठी बरसात हो तुम, आंखें बंद होते ही चेहरे पर आती मुस्कान हो तुम, तो कभी बहने वाले नाम आंसू हो तुम, मेरे जीवन की अरदास हो तुम, मेरे दिल की प्यास हो तुम।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे ईदु मिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

एचा आकाशवाणी ईटानगर थाला पुची हेयो आसोलिनी एतानीची इदमिश्मी आहोलाकेजी दरकालंबो एताने हे आकाशवाणी आजितया खिनहुनुबा इनी एनागा महा इनु मानबाउखे आसो तारुमाचिनु इनी तानी इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हे आमु लामनागने ऑल इंडिया रेडियो अखगा बचे इंडिया तिहता तोपा इनु मामरा उखे मंगा तारुमा चिनु प्रोफेसर गोपाला स्वामी में ऑल इंडिया रेडियो है आकाशवाणी आदिची खा आमु आखा बचे ऐसा हो इंडिया मा माओ मंगा ने खिंचू के आकाशवाणी स्टेशन खा गा मने अन्य का सोल लैंग्वेज एको बतो तो ने माओ का प्रयोग तारो डायलेक्ट एको बतो प्रोग्राम आएगा आया मचामा इंडिया अवता आतिपू मालो अलुमा आकाशवाणी स्टेशन खगा महो के बगा खिनाव लातिया आकाशवाणी माचे प्रोग्राम है इंडिया माचे खिन्यू यू पर्सन इमु में अरुगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTMM एचला पुचे जान्यू के माचे नी नीट यूजी एग्जाम अखगा नावदा ला होगा ने आजोके काको प्रमाने एग्जाम हागाई बो आया एग्जाम है इंडिया माचे आतिपू मा मंगा ने मारू के इधोने इंडिया आमाचे आतिपू होलुपी माने अखगा दा ला होगा आति लाके चिला काकोपा है एडमिट कार्ड आजो पगुम दा ने एनटीए मच में ला होगा महो मेडिकल आजो आई तो दा उयागा बने नीट यूजी एग्जाम आहा शोला पुची ऐसो मच ने अखगा ही बमाचे ताहुला आजपा अमया कुगा बा आशु योगे पापा ने सीबीआई में आ आशु सुगा गरीब कल्याण स्कीम को कमाने इमुंगा थलम ब्रो आरोगा जी चाहे एतान्य हुलुनी नो बादा ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में ला होगा ने आ स्कीम में हागिशी इमुतान दो आरो बदा लगादा आ होगा अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट मच स्पोर्ट्स दो ने यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में बुनी अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दो ने माई भारत गो आरोगा गने वर्ल्ड बाइसाइकिल डे इनी एनागा दुमा स्पोर्ट्स मिनिस्टर केंटो जीनी अदोने एमएलए कानी जो जिग्नो नामसुंग दोने मुची मिथी में गिगा बने बाइसाइकिल रैली थुया असला किगने आहेगा वेबदा आहोगा कानून आचु चिपुआ आसा अदोने याको नंबर भुए चिपुआ ईटानगर माचे याकू पुलिस स्टेशन माने लाजवर प्रोग्राम अखानेगा मा जयनाथ गवर्नमेंट कॉलेज ने डॉन बॉस्को कॉलेज माचे आज आहिता में

0: La joga al nime me alambro he Antonio ya en la bombo e que wa chi da joga uko elai baba class huluni exam ma chi answer a chopa athu sum bo enjoy he aha achala puchi eni ma chi ne hi u ma chi ne li ba pra chi ga chi da ne si bia si ma chi me ona la shi ga ne ini alige mam ejan batar hu alu exam zuya me application azo हाथी को कमाने कासो लाग दो ने एजेंट बयो एग्जाम माचे लादा आंसर आजपो हाथसु लगा लादा ला होगा म्यान रूम में रूम दा लगा मा बोर्ड में मुझे की अतु ते पुगाउ दा ने सीबीएसई माचे में ला होगा बुनी निगा ईटानगर गंगा क्लॉक टावर अनुनो ने ऑटो आलेगा इमुगे सेवे एला अशुमाने ताई साइमन लाएगा अनुनो इयोनो ऑटो अलाएगा इमोगे ईटानगर पुलिस में बुनी रोटिका बदा आहोगा इचुगे खोगा बेमने ताई में ए आची चेगा ने आए मो है नापरा ए बने तामो को खगदा ने पुलिस में ला होगा ने पुलिस में सीसीटीवी दोने किसा साखी इमोगा ने आ आशु सुपगला दा ला होगा ऐतनिची इदुमिश्मी आहो एलिमाओ दबाए एचा आकाशवाणी ईटानगर दिवगर नाली ইদ মিসমি প্রোগ্রামমা এচন্তা আশে আহো সখিয়া মাহ এতানি হেন্দো দিসি মিহুমে আশে নেগাচি আহচি
1: श्रोताओं आप सुन रहे थे ईद उमेश्वरी श्रोताओं का कार्यक्रम। इनका आगे का कार्यक्रम भी जारी रहेगा। अगर आप इनके आगे के कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन करिए आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओं आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं जारी रखते हैं हमारे हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम को और आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स का ये आखिरी गीत, और अब से थोड़ी देर में यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे तानसा श्रोताओं का समाचार। और श्रोता, उसी के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का दूसरा ट्रांसमिशन। पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारे तीसरे ट्रांसमिशन के लिए स्टूडियो पर आ गए हैं आपके आरजे साजिद, जो आपको तीसरे ट्रांसमिशन के सभी कार्यक्रमों के लिए आपके साथ रहेंगे। श्रोता, अब मैं यानी कि आपकी रेडियो साथी आप सभी से विदा लेना चाहती हैं, पर आप बने रहिए अरुण एफएम और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 MHz पर।

अगर आप चाहते हैं या ताजी हवा का आनंद लेना चाहते हैं तो शाम के समय टहलना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। पैदल चलने के फायदे तो आप लोग जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि शाम के समय टहलने से ज्यादा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। शाम को टहलने से आपकी आंतरिक घड़ी को नियंत्रित करके आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। दिन के समय प्राकृतिक प्रकाश के संपर्क में आने से शरीर शाम को मेलाटोनिन का उत्पादन करता है, जो मस्तिष्क को सोने का संकेत देता है। शाम को टहलने से आप अपने शरीर की प्राकृतिक सर्कैडियन लय को और मजबूत कर सकते हैं और ज्यादा आरामदायक नींद भी ले सकते हैं।

ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 MHz पे और हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में शाम में टहलने के फायदे के बारे में। दोस्तों, पैदल चलना एक कम ऊर्जा खपत वाला व्यायाम है जो रक्तचाप को कम करने, हृदय को मजबूत बनाने और रक्त प्रवाह में सुधार करके हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। शाम के समय थोड़ी देर पैदल चलने से भी कई फायदे होते हैं, जैसे सूजन कम होना और रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है। दोस्तों, जब आपके पास ऊर्जा की कमी हो तब टहलना शायद अजीब लगे, लेकिन शोध से पता चलता है कि व्यायाम वास्तव में ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकता है। शाम को टहलना, थोड़ा ज्यादा व्यायाम पाने और दिन भर डेस्क पर या क्लास रूम में बैठे रहने के बाद शरीर को तरोताजा करने का एक शानदार तरीका है। आप पाएंगे कि इसके बाद आप अधिक सतर्क और एकाग्र महसूस करते हैं। दोस्तों, वजन कम करने या नियंत्रित करने के लिए भी पैदल चलना एक कारगर तरीका होता है। शाम को टहलने से कैलोरी बर्न तो होती है और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है, जिससे आप अपने वजन घटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। इससे खाने की इच्छा कम होती है, जो अधिक खाने से हमें रोकती है, और पाचन क्रिया बेहतर होती है, जिससे शरीर पोषक तत्वों को अधिक कुशलता से अवशोषित कर पाता है। दोस्तों, नियमित व्यायाम से मूड बेहतर होता है और अवसाद व चिंता के लक्षण कम होते हैं। शाम को टहलने से ताजी हवा और वातावरण में बदलाव आता है, जिससे आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा टहलने से आपको आराम मिलता है और आप पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान लगा पाते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पे। दोस्तों अभी से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार, इंग्लिश न्यूज और फिर नुक्ते श्रोताओं का समाचार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर। आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में 5:05 में।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा। अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार ताइता गाक ने आज विधानसभा में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। अरुणाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम अफरा 1988 के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई हाई पावर कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंप दी है। भारतीय सेना के स्पेयर कोर के अंतर्गत स्पेयर हेड डिवीजन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के लिकावाली में प्रोजेक्ट नव भारत के तहत एक युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली की कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और क्रिकेट में भारत ने आज न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान को एक ही पारी में 300 रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट की अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा ने आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 1987 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिसे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ है।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: Aman Yadav ke saath Saklayan Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
1: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामनाएं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया। श्री मोदी ने आज कहा है कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा है कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और यही कोशिश रही है कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूटे गए लोगों तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर करना और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
7: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण की विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
8: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
9: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
10: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
11: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
1: अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार ताई तागाक ने आज राज्य विधानसभा में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चौना मेन और राज्य भाजपा अध्यक्ष कालिंग मोयोंग, पार्टी के राज्य प्रभारी अशोक सिंघल, पार्टी के वरिष्ठ नेता और समर्थन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्री तागाक का व्यापक अनुभव, राज्य की गहरी समझ और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें राज्यसभा में अरुणाचल प्रदेश की एक मजबूत आवाज बनाएगी। प्रस्तावक की भूमिका निभा रहे उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश की विकास यात्रा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी प्रतिनिधित्व बेहद जरूरी है और उन्होंने चुनाव में तागाक की सफलता की कामना की। भारतीय सेना के स्पेयर हेड के अंतर्गत स्पेयर हेड डिवीजन द्वारा देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और जिम्मेदार नागरिकता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के लिकाबाली में प्रोजेक्ट नव भारत के तहत एक युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में लिकाबाली के निकटवर्ती सिलापोथार के 250 से अधिक विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने भी भाग लिया। विद्यार्थियों ने प्रेरणादायक व्याख्यान सुने और भारतीय सेना के अनुशासन, वीरता तथा बलिदान को प्रदर्शित करने वाली चित्र फिल्में भी देखी। अरुणाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम अफरा 1988 के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंप दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कमेटी के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड वजेंद्र प्रसाद कोतोकी तथा सभी सदस्यों को इस काम को पूरा करने में उनकी प्रतिबद्धता और समर्पित प्रयासों के लिए बधाई दी और धन्यवाद किया। उन्होंने पूरी प्रक्रिया के दौरान गृह राज्य मंत्री मामा नातुंग, पालो राजा तथा केंतो जेनी के नेतृत्व और सक्रिय भागीदारी के लिए भी उनके योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग, कुरुंगकुमे, क्रादादी, दिवांग वैली और अंजाव को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक आयोजित होंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि यह बैठक वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। उन्होंने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
12: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो, कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: क्रिकेट में भारत ने आज न्यू चंडीगढ़ के महाराजा युवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान को एक ही पारी और 300 रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी अब तक का सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। और इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए, इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया है।

जी दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव, ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। दोस्तों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम की महफिल। शाम का वक्त अपने साथ ना जाने कितनी यादें, कितनी एहसास और कितनी अनकही दास्तानें लेकर आता है। दिन भर की मसरूफियत के बाद जब सूरज ढलने लगता है तो दिल भी कुछ देर ठहर कर अपने ही ख्यालों की गलियों में निकल पड़ता है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज की महफिल का आगाज करते हैं। कहते हैं ना, ढलती हुई शाम ने फिर यह पैगाम दिया, जिंदगी हर रोज नई उम्मीद का नाम दिया।

दोस्तों, कभी कभी दिल किसी ऐसी राह पर चल पड़ता है जहां ना मंजिल का पता होता है और ना सफर का हिसाब। बस एक एहसास होता है जो हर धड़कन के साथ और गहरा हो जाता है। मोहब्बत भी कुछ ऐसे ही होती है, ना ये किसी दस्तूर को मानती है, ना किसी सरहद को पहचानती है। ये बस दिल से निकलती है और दूसरे दिल में अपनी जगह बना लेती है। कहते हैं इश्क वो रोशनी है जो दिल में उतर जाए तो फिर हर रास्ता मंजिल का पता दे जाए। अब जिस नगमे की मैं बात करने जा रहा हूं, वो भी मोहब्बत, उम्मीद और दिल की आवाज को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। फिल्म कभी अलविदा ना कहना का यह सूफियाना अंदाज दिल को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC.
2: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। दोस्तों, मोहब्बत की दुनिया में कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो मुकम्मल नहीं होते हैं, लेकिन उनकी गूंज उम्र भर दिल में रहती है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें जुबा भले ही कम पुकारे मगर दिल हर धड़कन के साथ दोहराता है। कहते हैं किसी का नाम यूं दिल पर लिखा जाता नहीं, मगर जब लिख जाए तो फिर मिटाया जाता नहीं। दोस्तों, इश्क जब अपने इंतहा पर पहुंचता है तो वो सिर्फ एक जज्बा नहीं रहता, वो इबादत बन जाता है, इंतजार बन जाता है, और कभी कभी एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आंखें नम हो जाती है। एक ऐसा ही नगमा जिसमें बरसों से लाखों दिलों की धड़कनों में अपनी जगह बना रखी है। फिल्म तेरे नाम का ये यादगार गीत जो मोहब्बत की सादगी, दर्द और वफा का बेहद खूबसूरती से बयां करता है,

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम की महफिल। ये आकाशवाणी ईटानगर का रून एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम स्पेशल हिंदी फिल्मी गीतों का।

How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो?

आकाशवाणी ईटानगर तानाक दिंगम आसेरु पे कुमलिक सीतोला सीयुम के आदि पबम ईरोप तुम कराफ आदि लुतादम तत्पाइल विनस तबुक तली सेलो के लोंगा सिम आकाशवाणी है तागिं को नंग को हुप एम इरगारु पे लोदुम बम दुम गिकाना 1938 देता जून पोलो के पी तारीख तेलो इलेन के बोला इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस एम लुगे बोतो तेलो ग्रोंगम ऑल इंडिया रेडियो ए आई आर एम ला अमिन अने अमिन एम मिनलन के बोतो को सिलो के लोंगा सी काउंटी सोक मुदुम बम नाम लोंगा को पे इतुम सिलो के लोंगा सोक के काउंटी सोक लगिंग लगां कल्चरल इंफॉर्मेशन डेलो ब्रॉडकास्टिंग लगां आयोन एम इरोप लेंटो अकोदा 1956 तक देलो काउंटी सो ऑल इंडिया रेडियो अमिन एम आकाशवाणी एम ला मिनलन के बोतुं को सिलोलोफे आकाशवाणी 591 स्टेशन को इगबोदुं इला काउंटी सो पॉपुलेशन हिसाब लो इला 98% लो इगबोदुं आकाशवाणी से 23 लैंग्वेजेस 146 डायलेक्ट्स कोपे ब्रॉडकास्टिंग अगर एम इगबोदुं डेलोकले कोपे आकाशवाणी लो आगम लुकान गबोनाम ब्रॉडकास्टिंग इनाम एम कॉम लिंकोंगान ना लुयु काउंटी को तत्पाद फेकोम इगबोदुंग एमला लुकांदो यबमदुंग नाम पोलो सोग लोइंग अन्य कोलंग लोटेल तारिक लो नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन बीपे नाम लेगा पे पोरिक्यांग बीपे को सिटी मोले क्रिदिंग एम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए एप गिलन के बोतुंग पोरिक्यांग सिंग पेन किंग इला पेपर लो आद के बोला युमा बाजी 2 PM लो के बीरोप के बोला 5:15 PM लो बीन के बोये पोरिक्यांग सिंग काउंटी आरंग सोगलिंग को अंगो को लंग एइंग अंगो को लंग अतेल 551 सिटी को लो लंग एइंग को लंग आग पी 14 लुयु सिटी को लो बी के बोये एम लंग कम लुकांदो सुपा के पोरिक्यांग बीपे को एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप से आधा एडमिट कार्ड माय एमला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है पर आपके बोतो सुपर के स्लिप लुकार बिनाम से परीक्षण भी पे को मॉल पे तम एम लेंकन के बोतुं नीट यूजी परीक्षण सो पास पाला मेडिकल परीपना के दिन एम गिकाना में पोलो एलोक लोंगुम तारिक लोग ये रोब तो पहलुनाम एम पेपर लीग रेगोलो में पोलो देलोग लोइंग को लंग लोनी तारिक देलो लुतुम के बोतो को पेपर लीक रेगो सिम सुपाक सीबीआई ए इंकितत के एम आई रूप इगबोदुं एम लंको लुकांदो लुतत सिम आकाशवाणी इटानगर लोक तत्पादुं तागिंग को लंग दितक अन्य को फे नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट ये के बोटो लोक ओपन अमी लगंग फे वेलफेयर अगेर केर के बोनाम किदिंग गेर के बोनाम बदुवे लंग तकाम एम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिसी लो लुकान के बोतो प्राइम मिनिस्टर बिगलिप गरीब कल्याण अभियान आयोन लोग अगेर गेर के बोनाम तेलो अंतोदया आयोन लोग गवर्नमेंट ए अगेरा नाम इगलु के बोनाम तकम एम काउंटी सोक मीपी मियोंग ए केनिन काइन सिदुंग एम ला सोशल मीडिया लो आतकान बिदो तेलो क्ले कोफे तागिंग दि तक करा फे डेवलपमेंट बदु वलंग लगंग केन मिन कामन गमाना किटिंग लोग सुपक के बेनिफिट अनुर पामन के कुनाम किटिंग एम कॉम मीपी मियोंग ए केनिन काइन सिदुंग एम ला आतकान बिदो मलोके लोंगा देलो अरुणाचल प्रदेश सी वर्ल्ड साइकिल डे फेवो एम इरगारु फे लोदुम बम तो पेवो सोक अमिन लोक साइकिल रैली को कॉम डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स एलान अरुणाचल साइकिल एसोसिएशन देलो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया देलो माई फारो ताकाम सिले को वोसिदोला इगेबोतो साइकिल रैली सो स्पोर्ट्स मिनिस्टर केंटो जीनी एमएलए सो जिंगनु नामसोम देलो मुचुमिती बुलु लेकोमिन गतो ला साइकिल रैली एम कम तुममिन गतो साइकिल रैली पे वो सोक अमिन एम पेडल टुवर्ड्स ए हेल्थियर एंड ग्रीन फ्यूचर एम ला लेवम दोला सेके पे साइकिल रैली इगबो नाम से आयरुना अतोको फे इदुंग देलो साइकिल तुक नाम से अमिरामो एम कम एकरत संग गमोदुंग एम ला मिनिस्टर केंचो जी ने लुगे बोदो साइकिल रैली पे वो सब बोते सो बोते बोते ना ऑफिशियल लेजिस्लेटर देलो अबित अबित देलो वेलो अमी कितिंग ए बोचे को इमिन यमिन का तो एम लंकों लुकान दो इतानोगो लोग वोमेन पुलिस स्टेशन लो लीगल लिटरेसी वोमेन सेफ्टी एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप एम नाम एवानेस पेबो को पेबो इगे बोको लो देरानाटुंग गवर्नमेंट कॉलेज लोक पड़ी को डॉन बोस्को कॉलेज लोक पड़ी को देलो एमआईटी यूनिवर्सिटी
imin gato em la lukando evanes peboso police official kiding a emergency response support system ERSS 112 criminal law ani ilen gabonam women's legal rights the post act the law emergency helpline services log legging legang kiting em peboso adum sinak ko kiting em lutom itom gaboto the log leg of peboso adum sinapori ko kiting em aroma na unlawful betu valeng violence regolo iminyemen gama peka emna nitom doing gaboto the law lawful democratic ageranam chekana PILS RTI application the law read petition legang lodan le komin galangka emna nitom doing

0: Gafto. Spear Corps Aranglo Indian Army Spear Division Project Navbharat Amundlog Youth Empowerment Program Favoko Likavali Lo Igeboto Pevoso Likavali Delo Lui Lamgo Log Duna Delo Silapotar Mole Log Poriko Delo Poribona Babu Bodum Linko Anikolang Eing Ango 250 Ngan Nakope Imungato Pevosi Ardaya Pet National Integration and Responsible Citizen Delo Patriotism legang ayon MI pe gen bosito pe itom lutom geboto pe boso Indian Army kiting a country legang pe toryanga yang gebonam buluk discipline kala ye gebonam delo county sok legang pe silik tulik pe ageranam ger gebonam kiting mkom documentary noksang ayon lok adum sina kiting em lengkan to sok leko leko pesim kalutadam solo indung.
1: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदि श्रोताओं का समाचार, ये आकाशवाणी ईटानगर करुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार। आज के कलाकार में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह के बारे में। 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज में जन्मे अरिजीत सिंह को बचपन से ही संगीत से प्यार रहा। उन्होंने शुरू से ही इसकी शिक्षा लेनी भी शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्होंने साल 2005 में सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल में भाग लिया। शो में उन्होंने अपनी सिंगिंग से दिल जज का जीत लिया था, लेकिन लोगों से उन्हें कम वोट मिले और वह शो से बाहर हो गए थे।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अरिजीत सिंह भले ही उस रियलिटी शो के विनर नहीं बन पाए थे, लेकिन उस समय उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने गाने का ऑफर दिया। भंसाली ने अरिजीत सिंह को फिल्म सावरिया का गाना यू शबनमी गाने के लिए कहा, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट बदली तो उनके संस्करण को हटा लिया गया। फेम गुरुकुल के बाद अरिजीत ने रियलिटी शो 10 के दम ले गए दिल में भाग लिया और इस शो के विनर भी बने। जीत के बाद उन्हें 10 लाख की प्राइज मनी मिली, जिसका उन्होंने म्यूजिक स्टूडियो शुरू किया और वह एक संगीत निर्माता बन गया। इसके बाद उन्होंने विज्ञापनों, समाचार चैनलों और रेडियो स्टेशनों के लिए संगीत और सिंगिंग कंपोजिंग शुरू किया। दोस्तों, अरिजीत सिंह ने अपने शुरुआती संगीत करियर का एक हिस्सा शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर, मोंटी शर्मा और प्रीतम जैसे संगीत निर्देशकों के लिए एक संगीत प्रोग्रामर और संगीत निर्माता के रूप में उन्हें बताया।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आज के कलाकार में हम बात कर रहे हैं अरिजीत सिंह के बारे में। अरिजीत सिंह ने बॉलीवुड में बतौर सिंगर साल 2011 में आई फिल्म मर्डर 2 के साथ डेब्यू किया था। उन्होंने इस फिल्म के गाने फिर मोहब्बत को आवाज दी। इस गाने को लोगों ने काफी पसंद किया, लेकिन उन्हें पहचान आशिकी 2 ने दिलाई। उन्होंने इस फिल्म के गाने मेरी आशिकी तुम ही हो को आवाज दी थी, और यह से उनकी किस्मत बदल गई। इसके बाद सिंगर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार। ये आकाशवाणी ईटानगर करुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। दोस्तों, अभी से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे निशी श्रोताओं का समाचार।
1: आकाशवाणी ईटानगर पोकुम

जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का समाचार, ये आकाशवाणी टनगर का रुनतम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष पर आयोजित।

90 सालों से एक वफादार साथी बनकर अपनी जनता की सेवा में समर्पित जिन्हें ऑल इंडिया रेडियो AIR के नाम से सब जानते हैं। 90 साल का सफर का जश्न और इसी मौके पर प्रसारित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके रेडियो साथी गैर अतः। श्रोताओ, आप सबको पता है कि आकाशवाणी की शुरुआत अपने अरुणाचल प्रदेश में 1966 में पासीघाट में हुई। हालांकि पासीघाट के ट्रांसमीटर पूरा अरुणाचल तक नहीं पहुंच पाते थे, इसीलिए ऑल इंडिया रेडियो डिब्रूगढ़ से स्थानीय भाषा में समाचार और गीत संगीत रिकॉर्ड होते थे और ब्रॉडकास्ट किया करते थे। फिर 1 अप्रैल 1986 को आकाशवाणी ईटानगर की स्थापना नाहरलगन में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री V.N. गादगिल की मौजूदगी में की गई। फिर नाहरलगन से आकाशवाणी ईटानगर को सन 1996 में ईटानगर लाया गया। उसके एक साल बाद यानी सन 1997 में आकाशवाणी डिब्रूगढ़ में जितने भी अरुणाचल प्रदेश के कार्यक्रम होते थे वे सभी पूरी तरह आकाशवाणी ईटानगर में लाया गया और सन 1997 से अब तक आकाशवाणी ईटानगर आप श्रोताओं की सेवा में कार्यरत है।

ये गीत तानाजीरी और उनके साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे। दोस्तों, जब हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें गर्व होता है कि हमने सोना संजो के रखा है। उन तमाम लोगों से बातचीत, उन तमाम

0: सवाल उठाते हैं तो हम कहते हैं कि हम उन आवाजों को, उन पलों को संजो के रखा है जिन्हें कोई भी टेक्नोलॉजी आपको वापस लाकर नहीं दे सकते। दोस्तों, समाज के प्रति आकाशवाणी का योगदान हर कोई अच्छी तरह जानते हैं। पुराने जमाने में तो रेडियो सामाजिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे। और जब हम आकाशवाणी के 90 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो ये जिज्ञासा और उत्साह रहती है कि शुरुआती दिनों में आकाशवाणी से जुड़े लोगों की कुछ किस्से कहानियां सुना जाए। इसीलिए हमने कुछ अपने पुराने साथियों से बातचीत की और उन्हें इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाया। तो आइए सबसे पहले आकाशवाणी के एक ऐसे कलाकार से मिलते हैं जिन्होंने 70 के दशक में आकाशवाणी डिब्रूगढ़ में अपनी आवाज दर्ज की। जी हाँ श्रोताओं, फोन के जरिए हमने बात की श्री होगम बोगो जी से, जो कुनु यामी गांव से हैं, कम्बा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से हैं।
1: मेरा नाम है होगम बोगो। जमाना में जब बच्चा समय था ना,
0: जी
1: उस समय में तगाम बोगो बोल के आदमी लोग पुकारा था। जब बड़ा हो गया, असली नाम होगम बोगो, पिताजी का नाम पक्षो बोगो था ना,
0: हाँ,
1: तो हम 1964 में कम्बा स्कूल में क्लास, जब क्लास 5 में था ना, बचपन से लेकर के नाच गान जो कॉमेडियन क्या वन एक्सप्ले सब बच्चा समय से लेकर के एक्सपर्ट होकर आ रहा
0: हाँ,
1: था। 1972 में डिब्रूगढ़ में रेडियो स्टेशन में ये सागवा सुगा साबरे दागना एक तो गाना, और इसका साथ में एक तो हम लोग का बैन बस्ती का दुखचर रहता गान बुरा,
0: हाँ
1: वो गान लेखक था,
0: हाँ
1: गाना लिखा दिया और उसी को भी गाया था। और उसका बाद उसी समय में आप तजुम्बा सर बोल के एक तो रेडियो अनाउंसमेंट था,
0: अच्छा
1: वही हमको बुलाया। और उसका 2 दिन का बाद हम लोग कम्बा आके स्कूल खोल रहा था। 2 दिन का बाद आपको 600 रुपीज रेडियो स्टेशन से दिया है बोल के हमको मिला था।
0: तो आपने एक ही गाना रिकॉर्ड किया आकाशवाणी डिब्रूगढ़ में?
1: मैं सेतु सेतु रिकॉर्ड किया था, सब गुम हो गया।
0: ओहो,
1: हाँ
0: हाँ, पहले जमाना में टेप में रिकॉर्ड करता था ना, फिर
1: हाँ
0: वो टेप से अभी फिर कंप्यूटर में शिफ्ट हो गया, तो
1: हाँ
0: उसको टेप का जो गाना है उसको कंप्यूटर में लाना पड़ता है। तो शायद अगर वो टेप से शिफ्टिंग किया है तो शायद होना तो चाहिए। छह गाना में से आपको कोई गाना याद है?
1: ओ गाना 50 ईयर समथिंग हो गया, 50 साल हो गया, अब याद है नहीं,
0: ओहो
1: सब गुम हो गया।
0: कोई याद होने से आप थोड़ा सा गुनगुना देने से भी अच्छा था।
1: तो सिर्फ वो गाना का गाना जैसे नहीं सुनेगा होगा, जो बशिश करता है बोल के सुनेगा अभी।
0: अच्छा, उस समय रेडियो में गाना गाना कितनी खुशी की बात थी आपके लिए। समय रेडियो का क्या इम्पोर्टेंस था?
1: तो मेरा ऐसे एक चूज था कि हम लोग रेडियो में असमिस गाना, हिंदी गाना क्या क्या सुनते रहता है, तो हम लोग का गालो गाना किस लिए गाने वाला नहीं है, अरे ऐसे क्यों करता है बोलकर, उसी का मतलब मैं डिब्रूगढ़ जाने के लिए तैयार किया है।
0: आपका जो गाना है, छह गाना, वो सब दुखसर तस्जी ने लिखा था ना, किसी किस ना आपने खुद लिखा कुछ कुछ गाना?
1: ये सागवा सुगा तो मैं अपने से कंपोज किया है, तो उसको भी हमको ये हम लोग का पूरम पूर्ति पोतम रिटायर डायरेक्टर हमको 500 रुपीज एवर ये प्राइस दिया था।
0: अच्छा,
1: ऐसे सागवा सुगा साबे दोंगना मीनिंग पुल तोराम गा देता है
0: हाँ, जरूर जरूर,
1: होगा।
0: वही वही आपको इसलिए अगर याद है तो। हाँ
1: सागो असुगा साबे दोंगना आने दोनी नो, ओगो असुगा ओबे दोंगना आबो पोलो नो, सागो असुगा साबे दोंगना आने दोनी नो, ओगो असुगा ओबे दोंगना आबो पोलो नो, बाकी सब गुम हो गया।
2: थैंक यू गा देने के लिए। और उस वक्त में आपके साथ गालो आर्टिस्ट

0: में कौन कौन गाया करते थे रेडियो में?
1: तो उस समय में हम लोग के सीनियर, हम लोग से सीनियर टकेंगम दे रहे ना, टकेंगम दे, लेकिन रेडियो में उसका आवाज नहीं है। और ये आपको हमसे सीनियर दूरी टाइप हो दिया था।
0: अच्छा, हाँ। आजकल तो बहुत सारा टीवी हो गया, यूट्यूब वगैरह हो गया, बहुत कुछ हो गया, तो इनसे मोबाइल से आप बहुत कुछ देख सकता है। तो आजकल का जमाना में रेडियो, आपके हिसाब से रेडियो को क्या करना चाहिए जो रेडियो फिर अपना जगह और भी अच्छा करने के लिए, आप क्या सोचते हैं?
1: रेडियो तो रेडियो नहीं होने से अरुणाचल या इस इंडिया या हम लोग का गालो तरफ में भी रेडियो में आजकल तो क्या क्या यूट्यूब यूट्यूब निकालते हैं, लेकिन भी रेडियो ही है। रेडियो नहीं होने से उससे मतलब जो खबर रेडियो से मिलता है वो असली है ना,
0: न्यूज़ ना।
1: जो डेवलप हो या एजुकेशन में हो, एग्रीकल्चर में हो, जितना भी ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो उसमें आपको खराब को भी अच्छा को भी क्या क्या डेवलप का बारे में हजारों पॉइंट सुनने मिलता है। रेडियो नहीं होने से नहीं होगा। यूट्यूब में बोलने से आपको जिसका एगेंस्ट है उसका एगेंस्ट में बोलता है, और जिसका अच्छा पाता है उसका तरफ में बोलता है। और ये फेसबुक भी अपना को बड़ा दिखा के क्या क्या फोटो निकालता है, अपना को सुंदर दिखाता है, लड़की लोग अपना को सुंदर दिखाता है, लड़का लोग अपना सुंदर दिखाता है, ये लोग पलटू है असली रेडियो। इसलिए नरेंद्र मोदी रेडियो में आपको अच्छा लगा सुन देता है ना।
0: हाँ, मन की बात भी तो करते हैं ना
1: हाँ हाँ मन की
0: प्रधानमंत्री।
1: बात को
0: आप
1: मैं
0: सुनते हैं
1: टीवी,
0: मन की बात?
1: अरे क्यों नहीं, तो
0: अच्छा,
1: मेरे हमारा सब इस इंडिया का फेवरेट प्राइम मिनिस्टर को तू संडे होने से हम लोग अभी बोलेगा बोल के हम लोग तैयार होकर सुबह से शाम तक।
0: बहुत अच्छा है। तो आकाशवाणी ईटानगर भी मोबाइल फोन पे भी आप सुन सकते हैं यार। तो आकाशवाणी ईटानगर को सुनने वाले जितने भी श्रोता है उन लोगों को अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे आप? अभी हम लोग रेडियो आकाशवाणी का 90 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस मौके पे कुछ बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से रेडियो सुनने वालों को?
1: जितना हम लोग का अरुणाचल का स्पेशली ईटानगर का रेडियो सेक्शन के लिए सब आदमी उसको अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा सजेशन, अच्छा जिस लोग जो लोग ज्ञान है, ज्ञान वाला लोग अच्छा डिसीजन, अच्छा सजेशन, अच्छा एडवाइस सुना के उसको डेवलप और डेवलप आगे बढ़ाने के लिए कर देने से मेरे लिए वही सुस्ते रहता। रेडियो नहीं होने से नहीं होगा। पहले बोला है कि रेडियो में असली असली बात, असली असली हुकुमदारी, असली असली गवर्नमेंट का जो पॉलिसी प्रोग्राम है
0: हाँ
1: रेडियो में असली रूप निकलता है।
0: जी,
1: इसलिए रेडियो को सब आदमी इम्पोर्टेंट देना है। और रेडियो स्टेशन के लिए गवर्नमेंट भी रेडियो स्टेशन को क्या क्या उसमें फाइनेंस करना है उसको भी गवर्नमेंट ने फाइनेंस करना ही पड़ेगा। मेरा और जानने के लिए नहीं उतना ही है।
0: ओके, कोई नहीं कोई नहीं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी ईटानगर में आइएगा और कुछ कुछ कार्यक्रम हमें दीजिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टेशन में। जब भी ईटानगर आए तो हमें विजिट करना ना भूले।
1: होगा ये हम इसका जब रेडियो स्टेशन के गाना गाने का बात, एक साल करीब एक साल का बात क्या हो गया यार, यार ये भूल गया। तेजू में हम लोग का नेता समय में डिस्ट्रिक्ट कल्चर कॉम्पिटिशन था, उस समय का चीफ मिनिस्टर प्रेमकांत तुंगकन था,
0: जी,
1: तो उस समय में भी हमको गुमकेंद्रीबा गौतू बागरा और लेट दागी बागरा एडीसी लोग, दागी बागरा उस समय में यूनिवर्सिटी से फर्स्ट फर्स्ट आके आलो वेचांग वेचांग नहीं उसमें उस दिन में सियांग डिस्ट्रिक्ट बोला था,
0: हाँ,
1: मेचुका लियो कवाली लिंक्योंग लेके, तो सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिए जनरल सेक्रेटरी था।

0: तो हमको बुलाया, चलो टीम के साथ चलेगा, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉम्पिटिशन करने जा रहे हैं बोल के हमको ले गया। तो उधर तेजू में हम बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट सिंगर, बेस्ट वन एक्ट प्ले, बेस्ट डांसर, ऑलराउंड मतलब हमको बेस्ट एक्टर नेपा बोल के हमको प्रियंकांत तुंगोन ने गोल्ड मेडल दिया है। उसके बाद क्या हो गया, ये जब लुजुमरोना सर का समय में पीपे एमएलए होते समय में तंबाकू दारा रूट खुल गया, तो उसमें पंचायत दारा में पंचायत हेडक्वार्टर 27 कॉन्स्टिट्यूएंसी का हेडक्वार्टर बनाने का समय में हमको भी कल्चर इसमें प्रोग्राम कर दो, कुछ शो कर दो बोल के बुलाया, तो हम सब यूथ लोग को बुला के उधर काम किया है और उस सोसाइटी में भी साथ दिया है बोल के हमको दामलू योंगम गेमादर दामलू योंगम ने हमको मेरा नाम पुकार करके डीजे रिटायर राष्ट्रभम था जो पंचायत का वाइस प्रेसिडेंट था ना,
1: हाँ।
0: उस समय में हमको उधर भी हमको ये सिल्वर मेडल देने दिया डीसी लाला जी।
1: तो आपने तो बहुत अचीव किया है।
0: तो उसके बाद आपको कॉटन कॉलेज गुवाहाटी से एक मतलब कॉटन यूनिवर्सिटी से एक ट्रूप आ गया ना, हमको असमिस गाना ठीक से सिखाया, तो हम आजकल असमिस गाना ही ठीक से जानता है, दूसरा नहीं जानता है।
1: तो असमिस गाना एक गा के सुनाइए हमें।
0: हम ऐसा एक कंपोज किया है, उन लोग एक गाना ये जगह का नाम पुकार के सुनाओ ना बोला है तूना, हम ऐसे लिख दिया है। इसमें हम लोग के इधर ये कंबा तरफ में इस तरफ में हिरिगना और उदेगो कामकी कॉलेज या इसका स्कूल का बीच में हिरुना और वो काम्बू तरफ में बीच में यमगोनो भी बहता है ना, उसका हम कंपोज किया है।
1: अच्छा,
0: हम ऐसे बोला है, हमारा तो गोरू का ट्यून जैसे होगा रे।
1: नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं।
0: सिरुए यमगो सिरी कर लगोते कंबांगो खोजाले है जहाजेरे, सिरुए यमगो सिरी कर लगोते कंबांगो खोजाले है जहाजेरे, ओ आदि भाई बनी मुके दी मरम हाही पनुंग ना सेरे आमाके बुलाई बुलाई बुलाई, सिरुए यमगो सिरी कर लगोते कंबांगो खोजाले है जहाजेरे।
1: तो आपने बच्चों के लिए आसाम के कॉटन कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ये गाना कंपोज कर दिया?
0: ले गया, उन लोग ले गया मेरा गाना लिख के।
1: ओके, तो आप असमिस भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना?
0: उस समय में हम लोग असमिस मीडियम स्टूडेंट था, तो आपको ये लेक्चरर ये टोमर जनरल सेक्रेटरी था, हम लोग ये इंग्लिश मीडियम के लिए इस तरह किया था ना, आलो टाउन का सब डिस्ट्रिक्ट का मीनो बोरी गालो हिसाब में सब एक साथ होकर इस तरह किया था।
1: ओके,
0: तो हिसाब से आपका असम राइफल तो आदमी लाइन वीर था, हम लोग बच्चा था उस समय में, नहीं सुनेगा तू इसमें देसी को भी क्या कभी बेतना नहीं देगा गोल को एक चिकन में हम लोग क्या देगा बोल के फाइटिंग किया ना। और उसका बाद क्या हो गया, हम सोसाइटी में हमको बस्ती आदमी लोग सोसाइटी में आओ बोल के सोसाइटी सोशल काम शुरू कर दिया ना, तो ऐसे क्या तू हमको बस्ती आदमी अपना बस्ती में स्कूल खोलने के लिए बात किया था, हम कुनियामी बस्ती का बस्ती में हम एक प्राइमरी स्कूल के लिए प्रपोज किया है, तू दे दिया स्कूल खोल दिया, इनोग्रेशन के लिए देवा पंख को बुला कर हमको मेथुन काटने के लिए बोला है, तो हम मेथुन एक तो काट दिया। उसके बाद बस्ती आदमी लोग हमको गाँव बुरा एंगेज किया है, तो गाँव बुरा होते होते 34 ईयर का बाद हेड गाँव बुरा दे दिया। तो उसके बाद क्या हो गया, हमको डिस्ट्रिक्ट एशियन का डिस्ट्रिक्ट का फार्मर प्रेसिडेंट में हमको नियुक्त किया है।
1: बढ़िया, बहुत अच्छी बात है।
0: आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब हम रिटायर होने जा रहे हैं।
1: ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: यस मिस, गीत अभी आपने सुना कोगिन महंत जी की आवाज में। ये गीत उस वक्त का है जब आकाशवाणी ईटानगर के स्थापना दिवस नाहरलगन में मनाया जा रहा था, तब कोगिन महंत जी को इस गीत को प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित किया गया था। पुराने जमाने में जहां हुनर दिखाने का जरिया कम था, वहां लोगों में हुनर कूट कूट के भरा था। बोगो जी की ही बात करें तो वे एक रेडियो आर्टिस्ट तो है ही, गायक तो है ही, साथ ही लोगों को हंसाते भी हैं, और उन्होंने इस क्षेत्र में कई नामी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। जब मैं याद करती हूँ तो बचपन में मैंने उनका नाम बहुत सुना था। हाँ, मैं ये नहीं जान पाई किस लिए वे प्रसिद्ध थे, लेकिन नाम मैंने बहुत सुना है। तो आज पता चला कि वे कॉमेडियन भी थे, गाते भी थे। उसी तरह गालो समाज में एक और आर्टिस्ट थे जिन्होंने ऑन द स्पॉट गाना कंपोज भी किया और गाया भी, और उस दौर में बहुत हिट भी हुआ, और जिनका जिक्र बोगो जी ने अपने सीनियर के रूप में किया, श्री दुरु ताइपोदिया जी।
1: रेडियो स्टेशन रिकॉर्डिंग फर्स्ट रिकॉर्डिंग इट बाई
2: रिकॉर्डिंग तोलो कॉलेज तो करे तोलो
1: तोलो
2: तोलो हेरी का ओके मॉग लक्के लोग गान को नाम दे
1: 61
2: स्कूल लोग रे तोलो
1: सार नो गोगी रे अंबे या में बे पुरी लाये दोगो नो तू माजी बे मुसम लाल बे मुलिक ला गोगी तुम गालो गो गोगी रे माई अंबे अंबे गला नोम ने अंबे गालो गोगी रे गोग ना ओके ट्यूनिंग अंबे हम बिट ना नो मेन तोम ना का दे मनु हेन सिन मे
2: मेन तोम ना का मा मेन तोम ना का मा मोक पुने यर ना जिनांगो नेचर गा जिनांगो एरिया मूद आबोल इंगो हिल दूद बास लो दूद पेरीजा नाव लो दूद मूद आबोल है नंगो मूद आना मने त्यून आ छोरे त्यून आबोलो गान अमुम अमुम नहीं हिदू अगले गाब बास लो दूद ला यो दो ला गान में रखू लिखो भोग रखू नीमो में एजर को रुक पक हिदू को खतम मोक एजा 20-30 को बजने तेने बचाई ला बायर तो पोला अमीन जी का दोला तो बायर मोदी तो अमीन लोग मो बुकरे दुगो मोल अतु मो को मेन तो मृतम न छि खामा
1: अना
2: माने मूद आनम लगावे तिउने आरे बारस हातु डायलो पे
1: अना
2: ह गोय मो को पुनिर न जिनांगो ये मेन तो मृतम न कामा मोल गो यो इंस्ट्रूमेंट छि कामा
1: इंस्ट्रूमेंट छि
2: कामा
1: कामा लपे
2: मोल होस्टेल लो जिपे दरम ग्रामो पुन गो अलक पाम जिगो दोला बेजिम निगलु गरे मोबे नंगो
1: अना
2: यो कामा
1: नम स्टूडियो आनीगो मेन जोय जको जिद्दे ओको
2: बुलु जिदके
1: जिदके
2: जिदके ओ मुरको आनीगो दामला
1: एना
2: गाना आउमम ने गोम ने 15 रुपीस को जिदके
1: एना ना ना
2: ओक तो मुरको दाम तो
1: एम एम
2: ओके येरा तू होस्ता तो
1: एम येरा
2: होस्ता कब्र तो
1: एम

0: ही मिलता था, वो न्यूज हम लोग रेडियो में ही मिलता, वो इतना हम लोगों को उत्साहित किया, उसी का वजह से हम लोग उसी से बहुत ज्ञान मिला, सीख मिला, तो उसी का आधार पर हम लोग रेडियो से बहुत गाइडेंस मिला, कुछ कुछ बहुत कुछ शिक्षा देता था, समझाता, उसी आधार पर हम लोग चलते चलते हम लोग आगे बढ़ने को मिला है। तो अभी 90 इयर्स कंप्लीट होने के बाद अभी दिखाई दे रहा है कि बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मोबाइल भी निकल गया, मोबाइल में भी ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम सुविधा मिला है, और कल्चरल जो है हम लोग का जो फोक ट्यून है उसको बचाने के लिए अभी से अगर हम लोग जितना भी यंग जनरेशन है वो लोग मिलके अगर हम लोग ऑल इंडिया रेडियो का साथ जोड़ने से बहुत अच्छा होगा। अगर रिकॉर्डिंग के लिए हमारा ऑल इंडिया रेडियो गांव-गांव जाते हैं तो उसको साथ देना है, आपका फोक ट्यून को प्रिजर्वेशन करना है, अगर अभी से हम लोग नहीं करेंगे तो और 10-20 साल का अंदर में गायब हो जाएगा।
1: आप सबके योगदान से आज आकाशवाणी अपना 90 साल का जश्न मना रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओ, आप आकाशवाणी ईटानगर को और आकाशवाणी ईटानगर के एफएम चैनल अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ को अपने फोन पर भी सुन सकते हैं, सीधा गूगल क्रोम से जाकर भी सुन सकते हैं, और न्यूज ऑन एआईआर ऐप के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं। दोस्तों, आज अपनी बात रखने के लिए हमारे पास कई सुविधाएं हैं, जनसंपर्क के कई माध्यम हैं, सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऐसे में कई बार रेडियो के अस्तित्व पर लोग सवाल उठाते हैं। ये जिज्ञासा जायज भी है क्योंकि रेडियो में विजुअल के मुकाबले ऑडियो पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम अपनी आवाज के जरिए लोगों तक हर चीज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ आवाज सुनने में क्या मजा है, दिखाई भी तो देना चाहिए, मगर जो रेडियो सुनने वाले लोग हैं, उन्हें पता है कि रेडियो की आवाज ऐसी है देखे बगैर ही सबसे खूबसूरत विजुअल्स आंखों में पैदा हो जाते हैं। क्योंकि जमाना बदल रहा है तो जो लोग विजुअल्स पसंद करते हैं उनके लिए भी आज रेडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर खुद को संवारा है। आकाशवाणी हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर है, सही और सटीक जानकारी के साथ लोगों का मनोरंजन भी हम करते हैं। समय और जमाना बदलते रहेंगे ये दस्तूर है, और उसी समय और जमाने के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना जीवन है, और आकाशवाणी सदैव अपने श्रोताओं की राय लेते हैं, हमेशा खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज के इस डिजिटल युग में डिजिटल मीडिया न्यूज फाइव के फाउंडर ईरानी सोनोवाल लेप्चा आकाशवाणी से क्या कहती है।
2: मेरे हाथ में आईफोन हो या हाई एंड एंड्रॉइड फोन हो, तब भी हम फैमिली के साथ या क्या बताएं, अगर फ्रेंड्स के साथ हम अगर गाड़ी में जा रहे हैं हम प्रेफर करते हैं कि फोन से ज्यादा हम रेडियो एफएम को ट्यून इन करने के लिए, क्योंकि काफी सारे अच्छे अच्छे शोज होते हैं उसमें, काफी सारे ऐसे शोज होते हैं जिसपे पुराने गाने लगाए जाते हैं, एवरग्रीन सॉन्ग्स, उसको हम काफी मजे लेके सुनते हैं। दूसरा चीज ये है कि हमें ट्रैफिक अपडेट्स मिलता है, वेदर अलर्ट्स मिलता है, लोकल न्यूज भी मिलता है हमें रेडियो के थ्रू, जो कि हमें डिजिटल से भी मिलता है। बट हम जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, हमारे लिए इंटरनेट फैसिलिटीज होना या जो भी है डिजिटल मीडिया रिलेटेड फैसिलिटीज वो होना वो बहुत कॉमन है। लेकिन अगर जैसे अरुणाचल की बात करें, अगर तो अरुणाचल में काफी सारे ऐसे इंटीरियर प्लेसेस है, नो डाउट गवर्नमेंट ने ये बताया है कि दूर दूर तक इंटरनेट पहुंच चुका है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे लोग रेडियो के थ्रू ही बहुत सारे न्यूज को गांव वाला मतलब जानते हैं, वहां से उनको जानने को मिलता है कि आए दिन देश में क्या चल रहा है। तो आई थिंक डिजिटल एरा में भी रेडियो का काफी रेलेवेंस है, और खास करके अरुणाचल जैसे जगह पे जहाँ पे बहुत सारे इंटीरियर विलेजेस हैं।
3: आकाशवाणी या तो ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो ये भी अपने आप को टाइम के साथ इवोल्व कर रहा है।
2: जी जी, मैं उसी बात पे आना चाहती थी। एक्चुअली डिजिटल मैंने देखा है आकाशवाणी का डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब में भी है आप, तो हमारे बहुत सारे लोकल आइडल्स जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलता है, ऐसे आप काफी सारे शोज करते हैं, और मैं जब भी ड्राइव करती हूँ मैं ऐसे शोज में ट्यून इन करती हूँ, मैं सुनती हूँ उनकी बातें, काफी इंस्पायरिंग होता है और उनसे काफी सारे चीजें सीखने को मिलती है हमें। और आकाशवाणी नॉट जस्ट वाइल ड्राइविंग, बट हम जब घर में बैठते आई ट्राई टू यू नो हर रोज नहीं होने से भी सैटरडे संडे को मैं जरूर लॉग इन करती हूँ, और स्पेशली हमारे जो लोकल डायलेक्ट्स वाला जो शोज होता है, जैसे कि गालो ट्राइब है, निशी ट्राइब है, ऐसे बहुत विभिन्न ट्राइब्स है हमारे अरुणाचल में, तो वो ट्राइब्स वाले शोज भी काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे. और इनफैक्ट मैं भी डिजिटल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म को यूज करके ही कुछ काम कर रही हूँ, आमदनी कर रही हूँ, और
3: जी
2: आपका ये जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, उससे मुझे काफी सारा कुछ सीखने को मिलता है. उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ. आई थिंक आपको थोड़ा सा आप कर ही रहे हो, बहुत सारे शोज तो आप कर ही रहे हो, यूथ सेंट्रिक हो या अलग अलग फील्ड सेंट्रिक, जैसे कि फार्मर सेंट्रिक हो, वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर कॉलेजेस में जाके थोड़ा बहुत अगर आप प्रमोट करो या समझाओ कि आकाशवाणी कैसे काम करता है, तो अगर आप यूथ से ज्यादा जुड़ पाए तो शायद और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा आपका नेटवर्क. मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी पूरा टीम को, पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में जितने भी आकाशवाणी के एम्प्लॉयज है, स्टाफ है, मैं सबको मतलब बहुत बधाई देना चाहूंगी. साथ ही साथ आकाशवाणी के साथ जो पहले से दादाजी के टाइम से जो अभी तक हमने जो देखा है, मतलब इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक व्हेन एवर वी टॉक अबाउट ए रेडियो. मतलब वो जो प्रॉपर रेडियो होता था हमारे टाइम पे, जब खेती बाड़ी के टाइम पे लोग या गांव वाले इकट्ठे होके सब सुनते थे, उस टाइम से अब तक एफएम में आना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और अब तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स में भी, डिजिटल में भी आ चुके हैं. तो ये जो जर्नी रहा ये काफी यू नो मैं फिर से बोलना चाहूंगी इंस्पायरिंग है. और ऐसे ही हमें अच्छे अच्छे शोज के साथ, अच्छी खबरों के साथ हमें वो कराते रहिए, और ऑल द बेस्ट टू टीम आकाशवाणी.
1: ईरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी से जुड़ने के लिए, और इसी तरह हमारे साथ हमेशा बनी रहे. बहुत बहुत धन्यवाद. 90 वर्ष तो सिर्फ शुरुआत है आकाशवाणी की. अब इस डिजिटल युग में आकाशवाणी डिजिटली और लोगों तक पहुंचना है, और सारी जानकारियों के साथ और बहुत सारे मजेदार गीत संगीत के साथ. आप जहां भी रहे, आपके पॉकेट में आकाशवाणी साथ साथ चलते रहेंगे, और हमारा और आपका ये सफर जीवन भर का है. जितने भी लोग अपनी आवाज, अपना ज्ञान आकाशवाणी के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनका आकाशवाणी ईटानगर दिल खोलकर स्वागत करते हैं. और जो श्रोता आज तक हमारे साथ इन 90 वर्षों में बने हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. हम आकाशवाणी परिवार की ओर से पुनः एक बार 90 वर्षों की शुभकामनाएं अपने सभी श्रोताओं को देते हैं, और इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी श्रोताओं से लेती हूँ विदा. सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और जुड़ते रहिए आकाशवाणी ईटानगर से. नमस्कार.

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर आयोजित स्पेशल कार्यक्रम। अब प्रस्तुत है हिंदी फिल्में की।

0: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे। जी होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अपना गीत।
1: अरुण FM 103.1 MHz पर प्रस्तुत है कार्यक्रम अपना गीत। अपने राज्य के गीतों के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी गैर अत।

अपना गीत कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना इदू भाषा में, हमारा लेजेंडरी सिंगर स्वर्गीय बुद्धि लिंगी की आवाज में। ये गीत एक ड्रिंकर का कन्फेशन था। कहते हैं कि दारू ना पीने की खुद से चाहे जितना भी वादा कर ले, पर ये लत ऐसी है, ये आदत ऐसी है कि पी ही लेता है। तो श्रोता, कन्फेशन से भरा इस गीत के बाद चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे दुनिया की हर माताओं को। प्यारी माताओं, बस आप खुश रहें और लंबे वक्त तक हमारे साथ, आपके अपनों के साथ रहें।

ये गालो गीत था जिसे मिस केम्बकम्के और उनके भाइयों ने मिलकर अपनी माँ के लिए बनाया था। गीत लिखा था गतो ओरी ने, कंपोज किया मीबी न्योदु तारिन ने और आवाज थी मिस पंगम लोम्ब की।

हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम है अपना गीत। तो आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं आदि भाषा में आलो लिबांग की आवाज में, जिसमें गायक एक लड़की की घमंड को तोड़ने की कोशिश में कहते हैं कि जवानी भी एक फूल की तरह है, एक बार खिलकर खत्म हो जाती है। खूबसूरत तुम ही नहीं बल्कि दुनिया में कई और है जो तुम्हारी तरह खूबसूरत है।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें हम लेकर आते हैं अरुणाचल प्रदेश के गीत संगीत हर शुक्रवार से शनिवार रात 8 बजे। जी हाँ, आप ही का अपना चैनल अरुण FM 103.1 MHz पर। तो चलिए, वक्त हो चला है अपना गीत कार्यक्रम के आज के इस अंक के समापन का। जाते जाते छोड़ जाती हूँ आप सभी श्रोताओं के लिए ये निशे गीत बिंग्या तब और तोको यालम की आवाज में। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटा।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज का। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत, वक्त भले ही आगे बढ़ जाता है लेकिन कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो अपनी खुशबू यादों में छोड़ जाते हैं। वो गीत जिन्हें सुने हुए शायद बरसों गुजर गए हों, मगर उनकी धुन आज भी दिल के किसी कोने में जिंदा रहती है। भूले बिसरे गीत में हम पलटते हैं यादों के उन सुनहरे पन्नों को जिन पर मोहब्बत, सादगी और सुरीली संगीत की अमिट छाप दर्ज है। दोस्तों उस दौर की बात ही कुछ और थी, जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे। जब अल्फाज दिल से निकलकर सीधे रूह तक पहुंचते थे, और जब एक एक नगमा जिंदगी की किसी ना किसी कहानी का हिस्सा बन जाता था। इसे पे एक शायर कहते हैं, वो धुनें आज भी दिल में कहीं जिंदा है जिन्हें सुने हुए बरसों के फासले गुजर गए हैं।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। दोस्तों, पुराने नगमों की बात ही कुछ और होती है। उनमें लफ्जों की नजाकत होती है और एहसासों की गहराई होती है, और एक ऐसी मिठास जो बरसों बाद भी दिल को छू जाती। आज की इस महफिल में हम आपको ले चलेंगे उस सुनहरे दौर में, जहां मोहब्बत नजरों से बयां होती थी और शायरी गीतों में ढल कर दिलों तक पहुंचती थी। कहते हैं, हुस्न जब ख्वाबों की चादर ओढ़कर सो जाए, इश्क भी फिर दस्तक देकर उसे जगाने आए। पेश है एक ऐसा ही यादगार नगमा, जो अपने अल्फाज, अपनी धुन और अपनी अदायगी के लिए आज भी लोगों तक दिलों में बसा है।

दोस्तों, मोहब्बत की सबसे खामोश जुबां शायद इंतजार होती है। वो इंतजार जिसमें रातें लंबी हो जाती है, नींद आंखों से रूठ जाती है और हर आहट में किसी अपने के आने का गुमां होने लगता है। कहते हैं रात भर चांद से बातें हुई तेरी याद में, सुबह हुई तो लगा जैसे एक उम्र सी गुजर गई। जनाब, इश्क जब दिल की गहराइयों में उतर जाए तो यादें भी इबादत बन जाती है, और उन यादों के सहारे ही इंसान कभी मुस्कुरा लेता है तो कभी तन्हा रातों में खुद से बातें करने लगता है। पेशे खिदमत है एक ऐसा ही सदाबहार नगमा जो इंतजार और मोहब्बत के खूबसूरत एहसास को बड़ी नफासत से बयां करता है। फिल्म मेरे महबूब से सुरों के बादशाह मोहम्मद रफी और मधुर स्वर की मलिका लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों, आज की इस खूबसूरत शाम में आइए सुनते हैं उस दौर में जहां मोहब्बत की जुबां में अदब था, नजरों में हया थी और अल्फाज में ऐसी मिठास कि बरसों बाद भी दिल उन्हें नहीं भुला पाता। कुछ नगमे सिर्फ गीत नहीं होते बल्कि मोहब्बत का एक खूबसूरत सा खत होते हैं जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचते हैं। कहते हैं, तेरा जिक्र हो और दिल मुस्कुरा ना दे, तेरा जिक्र हो और दिल मुस्कुरा ना दे, इतनी भी बेरुखी मोहब्बत को गवारा नहीं होती। दोस्तों, जब इश्क अपने सबसे पाक और खूबसूरत रूप में समा सामने आता है तो उसकी आवाज कुछ ऐसे ही लगती है, एक तरफ चाहत का एहतराम, दूसरी तरफ दिल की सच्चाई पुकार। आइए सुनते हैं प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे। चाहती है दिल से दिल की बात, और मैं हूं आपका RJ साचे। दोस्तों, रूठना भी मोहब्बत का एक अदा है, और मनाना उस मोहब्बत की सबसे खूबसूरत ज़बां। कभी कभी हम उन लोगों से रूठ जाते हैं जिनके बिना दिल को सुकून नहीं मिलता, और फिर दिल कहता है कि अब वो कहाँ जाएंगे। कहते हैं नाराजगी में भी मोहब्बत झलकती है, हर रूठे हुए लम्हे में चाहत झलकती है। दोस्तों, इश्क की दुनिया में ये नोक झोंक, ये छोटी छोटी रूठने ही रिश्तों को और भी हंसी बना देती है।

अपेश एक ऐसा ही प्यारा नाजुक और मुस्कुराहट से भरा गीत, फिल्म आरजू का ये सदाबहार गीत जिसे अपनी दिलकश आवाज में सजाया है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, कभी-कभी मोहब्बत सिर्फ दो इंसानों की कहानी नहीं होती, ये एक दुआ बन जाती है, एक यकीन बन जाता है, और कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे खुदा भी उस मोहब्बत को देख रहा हो। कहते हैं दुआओं में जब तेरा नाम आने लगे तो समझ लो इश्क अब इबादत बनने लगे। दोस्तों, जब दिल सच्चा हो और चाहत बेइंतहा तो फिर फासले मायने नहीं रखते और ना ही हालात। पेश है एक ऐसा ही दिल को छू जाने वाला नगमा जो मोहब्बत की सादगी और उस पर यकीन को बेहद खूबसूरत अंदाज में बयां करता है।

0: दोस्तों, ये थे आज के भूले बिसरे गीत जो हमेशा दिल के करीब रहते हैं। ये एक नई ताजगी देते हैं जो कभी पुराने नहीं होते हैं। दोस्तों, ये आकाशवाणी टनगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहोती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आज आपको बता दें कि आज के प्रसारण सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ हैं प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता तनातुन। तो अब से थोड़ी देर में आप आनंद ले पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित एफएम गोल्ड पर सभी कार्यक्रमों को। तब तक के लिए आप अपने रेडियो दोस्त आरजे साजिद को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब खैर।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म उपकार का ये गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, उसकी लगन और हमारी उपजाऊ धरती की समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की असली ताकत हमारी मिट्टी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य, उसकी उर्वरकता और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, और उसके अलावा 2331-0481, 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289904044। इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर डाबास, आपसे ही जानना चाहूंगी कि ये खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
1: प्रियंका जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि हमने प्रगति की थी, उसमें उस समय भी हमें काफी ग्रोथ मिली थी और हमारा देश उसमें काफी आगे था। केवल किसानों की मेहनत की वजह से और किसी अनाज की, धन के, उसकी सब्जी की, फल की या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा काल बहुत अच्छा निकला और कृषि ने हमेशा इस देश का साथ दिया है
0: जी।
1: तो अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना है, चित्र रखना है, तो किसानों को नई से नई तकनीक समय पर पहुंचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है किसानों को सही ज्ञान, सही

0: समय पर मिलना चाहिए जो कि कृषि वैज्ञानिक दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाने जाते हैं जिससे किसानों को नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को हर सही तरह खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान लें कहीं बारिश ज्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को टाइम पे उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएं, कौन सी किस्म लगाएं जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी। और सबसे बड़ी बात जो है हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज्यादा प्रयोग करते हैं जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। तो हमें किसानों को समझाना है कि मिट्टी की जांच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ में दूसरी बताना चाहूंगा कि जो हमारे देसी खाद है, रासायनिक खाद है, इसके साथ में जो जीवाणु खाद है, इन सबको साथ लेना चाहिए और किसानों को अपने जो नेचुरल रिसोर्स है उनको भी रिसाइकल करना चाहिए और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो और हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी हो।
1: जी आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम
1: जी,
2: सब्जियों के लिए प्रणाम
1: जी।
0: नमस्कार, नमस्कार जी।
2: सब्जी मेरा कुछ जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं हैं, उत्कंठाएं हैं। मैं मंगोलपुरी दिल्ली ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की, क्रॉप रोटेशन की, उनमें उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रबी, खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
0: ब्रह्मज्योति, जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि जमीन में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उसे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफी मात्रा में आयात होता है तो उसके आयात का सब्स्टिट्यूशन होता है तो विदेशी मुद्रा बचती है, दूसरी बात यह है कि हमारा खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और तीसरी बात है जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं और आजकल मोटे अनाजों की भी काफी जिज्ञासा बढ़ रही है और इनसे अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को और हम काफी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफी संभावना है। और ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ जमीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं और कम खर्चे पे भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है। जैसे पानी अगर कहीं ज्यादा तो वहां केले की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं, कर सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ती है और साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीजों को देखना है, जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज्यादा आमदनी मिल सके।
1: जी आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीणा, तो जैसे आप बात कर रहे हैं जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?
3: बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादातर किसान भाई एक या दो या ज्यादातर बहुत अच्छे किसान हैं तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है लेकिन क्या है ना, पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए लेकिन वो मिट्टी से लेगा, लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है, वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है और वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अभी क्या है ना, हमारी ज्यादातर मिट्टियों में जहाँ पे किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक बेस कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे, तो वहां पे क्या है ना, एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है,
1: कमी हो जाती
3: और उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
1: जी डॉक्टर, आपसे बात जारी रखेंगे। पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश
1: जी,
4: राकेश बात कर रहा हूँ, कोट खाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90वीं स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद
4: जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल के बाग, तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जब हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या किस तरह से हम काबू किया जाए, कितनी हमें मात्रा में खाद डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है, ये मेरा प्रश्न है।
1: डॉक्टर मीना।
3: तो राकेश जी, जैसे आप बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया, वो क्या है ना, ज्यादातर आपकी मिट्टियां अम्लीयता है, और अम्लीयता लगातार जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे, कई बार क्या है ना मिट्टी की जैसे कई कई जगह थोड़ी गहराई का भी एक इश्यू आता है, और आप मिट्टी का जब टेस्ट कराएंगे तो आपके यहाँ जैसे देखा गया है कि कैल्शियम वगैरह की भी बहुत कमी पाई जा रही है, और उसके कारण जो एप्पल का जो पौधा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि एसिडिटी ज्यादा हो गई, तो उस कारण से आपका जैसे और भी पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है, जिंक है, ये कई बार क्या होता है ना कहीं कहीं जगह बहुत अधिक हो जाता है, कई बार डेफिशिएंट भी होता है, मतलब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हमारी तो अम्लीय मिट्टी है तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता है, ऐसा नहीं है। बोरोन है, बोरोन एक नंबर वन जो मतलब कैल्शियम और बोरोन, ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज्यादा रोल है, और इसकी कमी कमी बहुत ज्यादा है, और किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा, तो
1: सॉइल टेस्टिंग समय समय पर बहुत जरूरी,
3: बहुत जरूरी
1: है, जो किसान कराते रहे। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं, योगेश झांगड़े जी।
5: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
5: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी जी,
5: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से जो हम लोग फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकता है उसको सही प्रबंधन करने के लिए।
1: डॉक्टर डबास,
0: योगेश जी, जो भी हमारे फसल अवशेष बचते हैं इनको हम खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पूसा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के उसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व भी सप्लाई करते हैं, और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है और वो भी 1 या 2 पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है, तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कंपोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से पेड़ को नुकसान हो सकता है, तो मैं उन किसानों को कहूंगा कि अपने खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा बिल्डी या सुडोमोनास, ये जैविक चीजें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है, और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज्यादा लाभ होता है, तो मैं सभी किसानों को कहूंगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें, और इस तरह से मिलाएं कि वो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
1: डॉक्टर दबास, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें, तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो।
6: हेलो
1: जी अनिल जी।
6: सर हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हर वर्ष किसानों को कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुंचे जो उनके नुकसान की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकता है किसानों के खेत बचाने के लिए?

0: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूंगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है, और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है, इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में। तो जगह हमारे राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी, और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत जरूरी है। तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उसे केंद्र की हो, राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है, और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हो और किसानों के जो संगठन बने आज के किसान उत्पादक संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
2: सर मैं ये जानना चाहता हूँ, हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले और मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए, कितनी गहरी ली जाए।
1: जी डॉक्टर मीना।
3: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा, जो क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि दो दो मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है। तो आपको बॉर्डर पहले दो मीटर छोड़ना है, और जितना ओपन है इवन पेड़ और बिल्डिंग, कुएं, जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना, लेकिन जितना खुला जगह है वहां से आपसे 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है। और मिट्टी की गहराई, जैसे जो आपकी भी सीजनल फसल है जो एक सीजन में खत्म होती है, उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती है ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है, और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले ली और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने में बोला ये बिल्कुल सही नहीं है, चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है। तो आपको यही है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए और जितना ओपन एरिया है वहां से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके, और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
1: जी हाँ, ये बहुत जरूरी है, और समय समय पर श्रोताओं जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए योजना भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है, तो उसका लाभ जरूर ले। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का। उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए।
3: देखो सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी मिट्टियां हैं धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है, तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं या कभी हम ऑर्गेनिक मेन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे मिट्टी की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं, और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप जरूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे हम अब एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पे जैसे पूसा डिकम्पोजर है, ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं, उनका उपयोग करके उनको वहीं गलन करके, मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है, और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन, तो वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है, यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा अवशेष या हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएं और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएं।
1: डॉक्टर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत, गोबर की खाद और

0: वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद, मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में? डॉक्टर नवाज,
1: जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर मीना ने जिक्र किया है, एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक खाद भी बढ़ाती है, और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पर इसका उपयोग करना चाहिए, और अगर हम उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है, दलहनी फसल काफी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक खाद भी बढ़ाने में मदद करती है, और उसमें हम केवल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉइल में इंकॉर्पोरेट कर देते तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितने भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज्यादा है, और आज हम काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन है वो वेस्ट हो रहे हैं, जिनकी वजह से नदियां भी पोल्यूट हो रही है और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो उनका भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से, एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उनका खाद भी बनाए, साथ में उसके गैस का उपयोग भी करें, तो ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जाता है उसकी भी बचत करेगा, और हमारे गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गांव बन सकते हैं। और आजकल इस गैस के माध्यम से मैं गाड़ियां भी चला रहे हैं तो उसका भी काफी बड़ा लाभ हो सकता है, और जबकि ये हमें बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का जो कंपोस्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि कंपोस्ट बनाते समय उन चीजों को अगर हम इनकॉर्पोरेट लगा देंगे तो एक तो कंपोस्ट जल्दी बनेगा, कंपोस्ट की गुणवत्ता बेटर होगी, इसमें एक तो वेस्ट डिकम्पोजर होगा, इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ जैविक खाद है जो उनके माध्यम से दे सकते हैं, या कुछ जैविक ऐसी भी चीजें हैं जो फफूंद नाशक, जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी का जिक्र किया था, सिडोमोनस का जिक्र किया था, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है, हमें एक तो खरपतवारों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह करना है जिससे कि हम कीड़े के प्रकोप को या जो नुकसान को भी कम कर पाए। एक पानी हमारे पास सीमित संसाधन है, तो पानी का सदुपयोग होना या सही मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। एक्सेस पानी हमारे न्यूट्रिएंट को भी लॉस करता है, खरपतवारों को भी बढ़ावा देता है, कीड़े और बीमारी को भी बढ़ावा देता है, तो इसका उपयोग ठीक से होना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कम बारिश होती है तो उसमें और ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस साल हमारे किसानों को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बरसात से पहले अपने खेत की मेड़ मजबूत रखें और अधिक से अधिक पानी खेत के अंदर जाए और बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और नुकसान करता है। तो हमारे किसानों उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना,
0: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी। हेलो
2: जी, नमस्ते।
0: नमस्कार
2: जी, मेरा प्रश्न है
0: जी,
2: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
1: मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा होता है, पौधा बहुत हेल्दी होता है। और बीज उपचार करने के लिए जितनी भी फसलें हैं उनके साथ साथ में दिया होता है कि हमें किस चीज से उपचार करना है। जैसे कि मैं छोटा एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारे यहाँ ब्लैक समेट एक गेहूं में बीमार वो आती है और इससे बाली काली हो जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है, और यही इसी किस्म के अगर बीज का हम बार बार उपयोग करेंगे तो काफी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही से फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा, तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगा, बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार के लिए दोनों चीजें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध हैं और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है कि बीज बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी प्योद होती है, जैसे हमने रुपाई करनी है, तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी काफी प्रयोग किया जाता है और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं, और साथ साथ में इसको पौध को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान का उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं, जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लूग्रीन एल्गी है या अजूला है, तो ये भी ऐसी चीजें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज्यादा लाभ देती है, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
0: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
3: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
0: जी।
3: प्रश्न ये है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजाति लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
0: डॉक्टर मीना आप क्या कहेंगे?
4: जैसे इंद्रबान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भागे तो वहां पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पे वहां पे एरिया में ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनके अवेलेबलता मतलब वो ऐसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी एक किसान की जागरूकता, जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन उपलब्ध है, और जैसे छत्तीसगढ़ में है या एमपी में है अपने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग मशीनरी के संस्थान हैं और वहां पे छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, बस बात यही है कि उनको किसान तक पहुंच नहीं है और किसान को भी उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है कि
0: वहां कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर जिसपे किसान कॉल कर सकते हो और जो उनकी जिज्ञासा है, जो अगर समस्या है वो पूछ सकते हो।
1: मैं इसमें दो बार ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो और भारत सरकार है उन्होंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे रखा है किसान कॉल सेंटर का, और वो पूरे देश में है और कहीं का किसान अगर वहां से कॉल करता है तो उसके राज्य के ही हेल्पलाइन सेंटर पे जाएगा और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी। ये नंबर है 1800 1551
0: जी।
1: तो ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर, इसी तरह एक पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1800118989, तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा में एक और भी नंबर है जिसमें आपको यहाँ का एसटीडी कोड लगाएंगे 01125841670, ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी नंबर हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक जो भी हमारे से एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में, देखो जो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ, खासकर अगर मिसार का हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंकल इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती थी आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है, लेकिन हाँ क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कम जा रही है उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहां पे डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।
0: जी हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
5: नमस्कार जी प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
4: नमस्कार जी
5: प्रियंका जी, आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताया, अच्छे बताए, और धरती कहे पुकार के ये भी
0: जी,
5: एक
0: जी राजेंद्र जी हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछें।
5: जी जी, जो शहर का बेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता है, इसमें केमिकल तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी को खेतों में डाले जाए तो बंजर होने से खेती को बचाया जा सकता है, और क्या किसी की खेती बंजर हो चुकी है तो क्या इस पे कोई लोन मिलना है?
0: जी डॉक्टर मीना।
4: हाँ, तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है, और हमारे जो सरकार है वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज को पहले हम उसका क्या है ना जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जांच करा लें, क्योंकि जांच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की समस्या है, कोई केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसका एक बार जब पता लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण आराम से उपलब्ध है, और उसकी परामर्श करके वो उसका ट्रीट करके उसको फसल के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि इसके लिए देखो सरकार का बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, जो जैसे हमारे जमीन सुधार के लिए, तो उसमें जैसे मान लो कहीं लवणीयता हो गई, क्षारीयता हो गई, अम्लीयता हो गई, उस कारण से कभी कभी क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो पीएच डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है, तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
0: डॉक्टर दबास, आपसे अंत में सवाल जानना चाहूंगी कि उर्वरक और जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: देखो एक्सेस और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है, और यही उर्वरकों का हाल है। जब हम उसको सही हम फसल से ज्यादा या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाती है, लेकिन उसमें से अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है, या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में प्रयोग करना बहुत जरूरी है। और हमें यह भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है, तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है। तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत सरकार के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह जगह पे वेरी करेगी। और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है उनके माध्यम से मिलकर उसको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित करके होके एक सामूहिक प्रयास करते हैं उसका ज्यादा लाभ मिलता है। पानी का भी हमें प्रॉपर सदुपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है।
0: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की जरूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझे, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर डबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य से बाहर क्यों न रहें। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कांग्रेस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री खड़गे ने कहा कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता की कमी हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है, ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुनने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। और खेलों में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक पारी और 300 रन से हरा करके अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: She said that this day is observed across more than 180 countries. India has deeply regretted the renewed attacks in West Asia as Israel and Iran traded fresh missile attacks today, triggering escalation in the region and jeopardizing the ceasefire. India has called on all parties to immediately de-escalate tensions and ensure that civilians are not harmed. In a statement, the External Affairs Ministry also appealed to conclude ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The Indian Embassy in Iran has also advised Indian nationals to avoid any travel to Iran in view of the recent developments in the region. India recorded their biggest ever victory in Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs on the third day of the one-off test in New Chandigarh today. The win surpassed India's previous record Test victory by an innings and 272 runs. It also displayed India's dominant bowling performance that saw them take 15 Afghan wickets on the third day. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। भारत ने इजराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप, करीब 32 लोगों की मौत। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश की रिफाइनरियों और गैस प्रसंस्करण इकाइयों में कल लगभग 53,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। ये संकट से पहले के स्तर की तुलना में लगभग 60% अधिक है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सुश्री शर्मा ने बताया कि इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 380 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। अब तक किसान लगभग 86 लाख मीट्रिक टन उर्वरक खरीद चुके हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने मीडिया को बताया कि दोपहर में जहाज एमटी वैरी वैक्स में आग की सूचना मिली थी। जहाज में 24 भारतीय कर्मी सवार थे। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। अरब सागर में आज एक भीषण समुद्री आपातकाल की स्थिति बिना किसी जानमाल के नुकसान के समाप्त हो गई। भारतीय चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता के बीच टैंकर एमटी मेरीवैक्स से 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान के तट पर चलते समय इस जहाज के इंजन रूम में धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब लेबनान और ईरान पर इजराइल के हमलों और ईरान की जवाबी मिसाइल हमलों के बाद पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। हालांकि ईरान ने सैन्य कार्रवाई रोकने की घोषणा कर दी है और युद्ध विराम के लिए राजनयिक कोशिशें भी चल रही हैं। फिर भी कमर्शियल शिपिंग रूट और इलाके में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। समुद्री सुरक्षा एजेंसियां टैंकर पर हुए हमले की वजह की जांच कर रही हैं, जबकि इलाके की सरकारें तेजी से बदलती सुरक्षा स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि ईरान और इसराइल तत्काल युद्ध विराम के लिए सहमत हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में हमलों और जवाबी हमलों के कारण तनाव काफी बढ़ गया है। श्री ट्रंप ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष का

0: स्थायी समाधान निकालने के लिए शांति समझौते पर अंतिम दौर की बातचीत जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही कोई सकारात्मक नतीजा निकल सकता है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही या गलत कदम समझौते की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि समझौता होने तक अमरीका की ओर से ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध और दबाव जारी रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि समझौते की दिशा में बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। ईरान के दक्षिण पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत में करुण पेट्रोकेमिकल कंपनी पर आज इसराइल ने हवाई हमला किया। ईरान की एक समाचार एजेंसी के अनुसार हमले में कंपनी के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। ईरान के पेट्रोकेमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन संगठन ने बताया कि खुजेस्तान के बंदरगाह शहर बंदरे महाशहर में मौजूद सभी कर्मचारियों को सुरक्षित रूप से पहले ही निकाल लिया गया था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के तहत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध हो जाएंगे। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करते हुए बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने कहा कि इस कदम से निर्यात वृद्धि दर बढ़ने, भारतीय व्यवसायों के लिए अवसर उपलब्ध होने और भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में आज सुबह रिएक्टर पैमाने पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। इससे लगभग 32 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए। भूकंप से जनरल सैंटोस शहर में कुछ इमारतें ढह गईं और प्रमुख बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। फिलीपींस के मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप पर स्थित सारंगानी प्रांत का मासिम शहर था। ये शहर 7 लाख की आबादी वाले जनरल सैंटोस के पास स्थित है। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी और उत्तरी मुलुक प्रांतों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिलीपींस में आए भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस कठिन समय में भारत फिलीपींस के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ब्रिटेन के लीड्स में कश्मीरी प्रवासी एकत्रित हुए। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा नागरिक स्वतंत्रता के दमन और लोगों के खिलाफ बल प्रयोग का आरोप लगाया। पाकिस्तान के संघीय राजस्व बोर्ड FBR ने चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में लगभग 684 अरब रुपए के राजस्व घाटे की घोषणा की है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं FBR पर लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इस बीच FBR ने दावा किया कि ये गिरावट मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों के कारण आई है। वहीं आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि राजस्व लक्ष्यों को साल दर साल पूरा न कर पाने का कारण केवल बाहरी कारक ही नहीं हो सकते। लातविया के पूर्वी इलाके रेजकने में और लुइजा के ऊपर हवाई अलर्ट के बाद नाटो के लड़ाकू विमानों ने एक ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन को नाटो के बाल्टिक हवाई पुलिसिंग मिशन के तहत काम कर रहे फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने रोका। पिछले महीने एक ड्रोन ने लातविया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था, जिसके कारण लातविया के रक्षा मंत्री एविका सेलिना ने इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों के अनुसार रूस ने बाल्टिक हवाई क्षेत्र में यूक्रेन के ड्रोनों को रोकने की कार्रवाई तेज कर दी है। इस बीच ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने लंदन में यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हुई चर्चा के बाद यूक्रेन और रूस से के बीच सीधी बातचीत के लिए समर्थन व्यक्त किया है। भारत ने अफगानिस्तान को न्यू चंडीगढ़ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। एक रिपोर्ट।
1: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन का विशाल स्कोर बनाकर घोषित कर दी थी। भारत के लिए इस पारी के हीरो कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल रहे। गिल ने 126 और राहुल ने 100 रन की शतकीय पारी खेली। अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 152 रन पर सिमट गई। टीम के लिए रहमत शाह ने सर्वाधिक 60 रन का योगदान दिया। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला मैच खेल रहे मानव ने 6 विकेट झटके। इसके बाद भारतीय टीम ने अफगानिस्तान अफगानिस्तान को फॉलो ऑन खेलने के लिए आमंत्रित किया, जहां अपनी दूसरी पारी में भी अफगानिस्तान टीम 112 रन पर सिमट गई। भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 4 और कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। मानव सुथर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: तीरंदाजी विश्व कप का तीसरा चरण कल से तुर्की के अंताल्या में शुरू होगा। इस चरण में भारत के उन सभी 12 तीरंदाजों पर नजर रहेगी जो 2026 एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप, करीब 32 लोगों की मौत। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I'm Abhineet Shukla with the World News. The headlines. New Delhi calls for immediate de-escalation of tensions as Israel and Iran exchange fresh strikes. India secures continued market access to export aquaculture products, honey and eggs to European Union beyond September this year. At least 32 people killed after 7.8 magnitude earthquake hits Philippines. And India records biggest ever victory in Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs in New Chandigarh. And now the news in detail. India has deeply regretted the renewed attacks in West Asia as Israel and Iran traded fresh missile attacks today, triggering escalation in the region and jeopardizing the ceasefire. India has called on all parties to immediately de-escalate tensions and ensure that civilians are not harmed. In a statement, the External Affairs Ministry also appealed to conclude ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The Indian embassy in Iran has also advised Indian nationals to avoid any travel to Iran. It has also advised the Indian nationals currently present in Iran to exit the country by available means of transport. Israel today carried out an airstrike on an Iranian petrochemical facility in Iran's southwestern Khuzestan province. No casualties have been reported so far. However, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, that is IRGC, said its aerospace forces targeted Israel's Nevatim and Tel Nof air bases in response to Israel's missile attacks on several radar sites in 3 locations in Iran. It added that all the IRGC's combat and operational units are fully ready to carry out operations on all fronts. The clashes came a day after IRGC's aerospace forces launched ballistic missiles at the Ramat David air base in northern Israel in response to Israel's attack in southern Lebanon. Explosions were also heard in west of Tehran, 2 in the central province of Isfahan and 1 near Tabriz, the capital of the northwestern East Azerbaijan province. Meanwhile, US President Donald Trump has said that both Iran and Israel are looking to implement an immediate ceasefire. His remarks came after a sharp escalation in hostilities marked by rounds of attacks and counterattacks between the two countries. Trump added that the final negotiations on a peace deal aimed at achieving a complete solution to the West Asia conflict are currently underway. India has said that a fire broke out on the vessel MT Merivex today, which had 24 Indian seafarers on board. Addressing interministerial briefing in New Delhi this afternoon, Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Opesh Kumar Sharma, said that all Indian crew members on board on vessel are safe.
3: There has been a recent report that today around 1:30 p.m. there has been a fire reported on a vessel MT Merivex in which there were 24 Indian seafarers. This is the preliminary information which we have received, based on which, as per available information, all Indian seafarers are presently safe. We are coordinating with Ministry of External Affairs, our Indian missions abroad, Indian Navy, Ministry of Defense to ensure their safety.
2: The exact cause of the explosion remains under investigation. We have a report from our West Asia correspondent.
4: The rescue of 24 Indian seafarers from the tanker MT Merrivex has brought relief amid growing instability across West Asia. The vessel caught fire after an explosion in its engine room while sailing off the coast of Oman. Omani rescue teams worked alongside Indian diplomatic officials, successfully evacuated all crew members without loss of life. The incident comes as tensions across the region remain high following Israeli strikes in Lebanon and Iran and retaliatory missile attacks launched by Tehran. Vinod Kumar for World News from Dubai.
2: India has secured continued market access for exports of aquaculture products, including honey and eggs, to the European Union beyond September this year under the amended EU regulatory framework. The European Union has included India in its list of authorized countries eligible to export these products after new regulations aimed at addressing concerns related to antimicrobial resistance. The Commerce and Industry Ministry said, India's inclusion in the authorized list will ensure uninterrupted access for Indian exporters to the European market. The development is particularly significant for the fisheries sector, as India's exports of fish and fishery products to the European Union are currently valued at around $1.59 billion. India will host key meetings of the BRICS Agriculture Working Group and BRICS Agriculture Ministers in Indore, Madhya Pradesh from the 9th to 13th of this month. The meeting will be centered around farmers' income, employment, livelihood, agricultural credit, and market access. Food security, agricultural trade, climate adaptation, and agri-innovation will be the key themes. Armenia's ruling civil contract party has won the parliamentary election. Prime Minister Nikol Pashinyan's party secured 49.8% of the vote. The Strong Armenia Alliance finished second with 23.2%, while the Armenia Alliance placed third with 9.9%. Pashinyan, who has been in power since 2018, hailed the victory as historic at a press conference. He said Armenian people voted for peace, regional prosperity and cooperation. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi has congratulated his Armenian counterpart. In a social media post, Mr. Modi said that the renewed mandate reflects the enduring trust and confidence of the people of Armenia in Mr. Pashinyan's leadership and vision. Mr. Modi also assured that he looks forward to working closely with Mr. Pashinyan to further deepen the warm and historic ties of friendship and cooperation between India and Armenia. This is Akashvani. You are listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. In Philippines, at least 32 people were killed and more than 200 injured after a 7.8 magnitude offshore earthquake hit the southern part this morning. A few buildings collapsed and key infrastructure sustained quake damage in the city of General Santos, and tsunami damage was reported in at least one coastal village. Smaller waves were measured in Indonesia and Palau and as far away as southern Japan. The Philippine Institute of Volcanology and Seismology said the tectonic earthquake occurred in the morning at a depth of 33 kilometers, with the epicenter 32 kilometers southwest of the coast of Masim Town in Sarangani province on Mindanao Island. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives and destruction caused by the earthquake. In a social media post, the Prime Minister said that India stands in solidarity with the Philippines during this difficult time. Pakistan's Federal Board of Revenue, that is FBR, has announced a massive revenue shortfall of close to 684 billion rupees during the first 10 months of the current financial year. It has raised concerns over the country's fragile economy. The scale of the latest shortfall has once again drawn criticism towards the FBR, an institution long accused of inefficiency, corruption and administrative weakness. According to media reports, the FBR remained behind its collection targets from the very beginning of the financial year, despite aggressive taxation measures imposed on salaried individuals and formal businesses. FBR claimed that part of the decline was due to disruptions in trade flows linked to the Middle East conflict, which affected import-related taxes and excise duties. However, economic observers noted that external factors alone cannot explain the failure to meet revenue targets year after year. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA, has voiced concern over the detention of women by Taliban authorities in Herat for alleged non-compliance with dress requirements. The UN body stresses that the action raises serious human rights concerns. The UNAMA's statement comes after Taliban morality police detained at least 21 women and girls in Herat for alleged non-compliance with the dress code. In Latvia, a drone was reported shot down by a NATO fighter jet following an air alert over the eastern regions of Rezhen and Ludza today. The latest drone was intercepted by French fighter jets operating under NATO's Baltic Air Policing Mission. India recorded their biggest ever victory in Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs on the third day of the one-off test in New Chandigarh today. The win surpassed India's previous record Test victory by an innings and 200.